0: बाहर के मौसम में सतर्क रहू आ सुरक्षित रहू। बाहर कोनो बखत आव सकत अछि, ताई प्रतिकार्य के लेल तैयार रहू।
1: जल तथा मौसम विज्ञान विभाग DHM द्वारा नेपाल के विभिन्न भाग में औसत से बेसी वर्षा होबाक पूर्वानुमान कयल गेल अछि, जै कारण बाढ़ आ कटान के जोखिम बढ़ सकत अछि।
0: सतर्क रह कर आवश्यक जानकारी प्राप्त करू आ स्थानीय सूचना सब के पालन करू। अहाँ के सुरक्षा अही के जानकारी पर निर्भर अछि।
1: बाढ़ के जोखिम भेला पर ई उपाय सब अपनावल जाओ।
0: जल तथा मौसम विज्ञान विभाग, वडा कार्यालय, स्थानीय सरकार तथा विपद जोखिम न्यूनीकरण संबंधी जिम्मेवार व्यक्ति सँ प्राप्त बाढ़ संबंधी जानकारी आ चेतावनी के ध्यान पूर्वक सुनू आ तही अनुसार उपयुक्त निर्णय लिय।
1: नजदीक रहल नदी खोला में पानिक बहाव के नियमित रूप में अनुगमन करू। नदी किनार या बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में वसवास कर रहल छी त सुरक्षित आश्रय स्थल या उचगर स्थान में रहू आ सुरक्षित रूप से निकले वाला रास्ता बाट खोजू।
0: सूचना द्वारा चेतावनी जारी भेल त देर नहीं कर तुरंत सुरक्षित स्थान में जेबाक लेल तैयार रहू।
1: अति आवश्यक सामान जना कि टॉर्च लाइट, मोबाइल फोन, चार्जर, दवाई, सूखा खाय वाला सामान, सफा पीबा वाला पानी, नगद रुपया, नागरिकता, पासपोर्ट लगायत अन्य प्रमाण पत्र सब झटपट झोला में तैयारी अवस्था में राखू। झटपट झोला का घर भीतर जल्दी पहुँचा वाला आ तुरंत लौ जा सके वाला स्थान में राखू।
0: अपन संपत्ति के सुरक्षा करू, संभव अछि त बहुमूल्य सामान आ चौपाया के उचगर स्थान में लौ जाओ।
1: दूसरों के मदद करू, बाल बालिका, ज्येष्ठ नागरिक।

0: तथा अपंगता भेल व्यक्ति सबके आवश्यक सहयोग करू। गर्भवती, सुतकेरी आ स्तनपान करा रहल माई के लेल सुरक्षित वास के व्यवस्था करू। ओ सब के लेल सकभर अलगे आ सुरक्षित चर्पी के प्रबंध करू।
1: विपद के बाद होवा वाला सर्पदंश तथा पानी जन्य संक्रामक रोग के जोखिम रहला सँ सचेत रहू। ई सूचना परिवार, पड़ोसी आ जन समुदाय में जानकारी कराओ।
0: बाढ़ दरवाजा तक आबि जाए ऐसे पहिने तैयार रहू आ आइए से सतर्क भ जाओ।
1: ई संदेश अंतर्राष्ट्रीय एकीकृत पर्वतीय विकास केंद्र ईसी मोड अंतर्गत के हाईग्रिड परियोजना द्वारा ऑस्ट्रेलियन सरकार आ सबल नेपाल के सहयोग में प्रसारण कैल गेल अछि।
2: चेतावनी सुनो, तुरंत निर्णय लिया आ सुरक्षित रहू।

0: 500 प्याकेट भित्र रहेका कुपनहरू हल्का प्लस रमाइलोलाई मिलाउनुहोस् र प्राप्त गर्नुहोस् एक प्याकेट मामा चाउचाउ सित्तैमा।
1: मामासँग हल्का रमाइलो।
2: भौजी बहुत टेंशन में छे, की भ गेल?
3: की हेतै देखू ना, केन बॉक्स पलंग खरीद के आनलकै जे नोट कसते कसते सब टूट गेल।
2: सुनू, जय श्री हनुमान ट्रेडर्स में बहुत मजबूत बॉक्स पलंग भेटै छे, खरीद के आन लिया आ वही ठाम सब सामान भेटै छे।
3: ओतो की सब तैयार करै छे यो?
2: बॉक्स पलंग, थ्री पीस आ टू पीस दराज, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, कुर्सी, अलना, ड्रेसिंग टेबल, बाघ पंजा सोफा सेट।
4: जी हाँ, शादी विवाह आ ऑफिस के लेल संपूर्ण सामान आधुनिक मशीन से कंप्यूटर के डिजाइन अनुसार फर्नीचर तैयार कयल जाय छे।
5: 5x6 फीट के फुल बुटा के बॉक्स पलंग शादी सेट 35,000 आ 6x7 फीट के शादी सेट बॉक्स पलंग 45,000 में भ जायत।
6: संगे मॉडल किचन खराद कार्विन के व्यवस्था छे। प्लाई, फोर्मिका, रेडीमेड ढोका, हैंडल, हत्था, कांटी, कब्जा, स्प्रिट, चपरा आ शीशा लगायत फर्नीचर के संपूर्ण सामान उपलब्ध अछि।
4: प्रोप्राइटर शंभू सुथियार।
6: जय श्री हनुमान ट्रेडर्स, राजविराज 1, कंचनपुर रोड, नहर चौक, चूड़ा मिल के बगल में।
4: मोबाइल
6: 9807040070 आ 9862860270।
7: फिरता 20% समकेश फिरता चाहिए पानी चाहा पानी
8: कैश फिरता लिनु भए त
9: एनसेल पैक किन्नु भए त जहिले पनि जहाँ पनि प्याक खरीद गर्नुहोस् अनि 20% सम्म क्याश फिरता एनसेल एपमा क्लेम गर्नुहोस्। एनसेल पैक किन्नु भए त शर्तहरू लागू हुनेछन्। एनसेल नेपालकै लागि।

0: Mania, Extreme Energy Drink.
1: 1 अपने सबसे इंद्रांची भूरकवा FM 92.8 MHz.

0: नीम करोली बाबा के जीवनी पर आधारित आ 175 करोड़ सँ बेसी के कारोबार विश्व भर में करो में सफल फिल्म हनुमान अंश शिव शंकर सिनेमा राजबिराज में चल रहल अछि। फिल्म हनुमान अंश,
1: हिंदी फिल्म हनुमान अंश, सब परिवार आब देखू आ बाबा नीम करोली के जीवनी सँ प्रेरित हो फिल्म हनुमान अंश।
2: सम्पूर्ण सुविधा सँ सम्पन्न यूनिक अस्पताल रायपुर रूपनी आ यूनिक सिटी अस्पताल राजबिराज,
3: अब बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरन, वीर अस्पताल काठमांडू, एम्स अस्पताल दिल्ली के दक्ष एवं अनुभवी विशेषज्ञ डॉक्टर सब द्वारा हर प्रकारक रोग के जांच आ इलाज करैत अछि।
2: एहिठाम महिला, स्त्री एवं प्रसूति, पुरुष आ बाल रोग सम्बन्धी जाँच आ इलाज करैत अछि।
4: सेवा आ सुविधा सब
3: 24 घंटा इमरजेंसी आ एम्बुलेंस सेवा, ओपीडी, मेडिसिन सेवा,
4: ऑपरेशन सेवा, चर्म रोग, हार्ट जर्नी, डायबिटीज,
3: होल बॉडी जांच, सीटी स्कैन, आईसीयू, एनआईसीयू, ओटी,
2: डिजिटल एक्सरे, एसी, नॉन एसी केबिन के सुविधा है। संपर्क कर जाए
3: यूनिक अस्पताल रूपनी रायपुर आ यूनिक सिटी अस्पताल राजबिराज 6 गणेश मंदिर नजदीक।
4: फोन
3: 031-530-7076,
4: मोबाइल
3: 9805-60800 आ एम्बुलेंस के नंबर 9805-56205, 9805-56202।
5: फिरता फिरता 20% समस्या सुफिरता सहले पानी चाह पानी
6: कैश फिरता लिनु भएता
7: एनसेल पैक किन्नु भएता जहिले पनि जहाँ पनि प्याक खरीद गर्नुहोस् अनि 20% सम्म क्याश फिर्ता एनसेल एपमा क्लेम गर्नुहोस्। एनसेल पैक किन्नु भएता शर्तहरू लागू हुनेछन्। एनसेल नेपालकै लागि।

0: नकुल ओइलको दुई मिनटको मालिस लिएर छ तपाईँलाई कुल दिलाउँछ गर्मी टाउको दुखाई थकान अनि अनिन्द्राबाट आराम नवरत्न वर्ल्ड नम्बर वन कुल ओइल चिसो चिसो कुल कुल
1: स्वास्थ्य कार्यालय सप्तरीको जरुरी सूचना
2: सप्तरी जिल्ला भित्र नगरपालिका आ गाउँपालिकामे जापानिज इन्सेफ्लाइटिस मस्तिष्क के जर बोखार मच्छर काट्लासँग भए रहल छै। ई रोग संक्रमित मच्छर के कटला से पटे छे। ई रोग कोनो भी उमेर समूह के व्यक्ति में लाग सके छे।
1: 15 वर्ष से कम उमेर रहल बाल बालिका में रोग देखल जाय छे।
2: ई रोग हाँस मुर्गी पंछी सुगर बंगुर से मच्छर में आ आदमी में रोग लागे छे।
1: ई रोग के प्रकोप खास करके सौन महीना से कार्तिक महीना धरि रहे छे। ई रोग के लक्षण सब
2: कोनो भी व्यक्ति के उच्च बुखार लगनाय मथा दुखेनाय बेहोश होनाय कंठ कड़ा भेनाय शरीर कपनाय एहन रोग देखला पर तुरंत नजदीक रहल स्वास्थ्य संस्था में संपर्क करू। समय पर इलाज नहीं कैल गेल त बिरामी के मृत्यु भ सके छे।
1: ई रोग से बचबाक उपाय सब
2: मच्छर कटनाय से बचू। घर से बाहर गेला पर वा खेत बारी में काम करे बखत समूचा शरीर झांपल कपड़ा पहिरू।
1: सब दिन झूल भीतर सुतू। हाँस मुर्गी सुगर बंगुर घोड़ा जेहन घर पलुआ जानवर आ पंछी के घर से दूर व्यवस्थित रूप से पालन करू। घर के झाल ढोका में जाली लगाबू।
2: घर के अगल बगल सफा राखू। अनावश्यक झाड़ पात सफा करू आ पानी के झाँप कर राखू। पानी जमल जगह के माटि से भरू।
1: ई रोग से बचबाक लेल 12 महीना के उमेर में जे ई विरोध खोप अनिवार्य लगाबू।
2: यदि समुदाय में कोनो बाल बालिका के खोप छूटल हो त 5 वर्ष के उमेर में सेहो लगा सके छी। विशेष जानकारी के लेल स्वास्थ्य संस्था में संपर्क करू।
1: अनुरोध करता
2: स्वास्थ्य कार्यालय सप्तरी।

0: Mania Extreme Energy Drink.
1: अपने साथ जुड़ रही थी बोरकबा ये

शताब्दीसम्म ढुक्क हुनुहोस् बजरङ स्टिल, शक्तिको नयाँ अवतार।

0: Media.
1: Extreme energy drink.
2: এখন আপনি শুনছেন ভরকবা FM 92.8 MHz.

0: नीम करोली बाबा के जीवनी पर आधारित आ 175 करोड़ सँ बेसी के कारोबार विश्व भरि मे करो मे सफल फिल्म हनुमान अंश शिव शंकर सिनेमा राज विराज मे चल रहल अछि। फिल्म हनुमान अंश,
1: हिंदी फिल्म हनुमान अंश, सब परिवार आबि देखू आ बाबा नीम करोली के जीवनी सँ प्रेरित हो। फिल्म हनुमान अंश।

0: 500 प्याकेटभित्र रहेका कुपनहरू हल्का प्लस रमाइलोलाई मिलाउनुहोस् र प्राप्त गर्नुहोस् एक प्याकेट मामा चाउचाउ सित्तैमा।
1: मामासँग हल्का रमाइलो।
2: सम्पूर्ण सुविधा सह सम्पन्न युनिक अस्पताल रायपुर रुपनी आ युनिक सिटी अस्पताल राजविराज।
3: अब बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान वीर अस्पताल काठमांडू एम्स अस्पताल दिल्ली के दक्ष एवं अनुभवी विशेषज्ञ डॉक्टर सब द्वारा हर प्रकारक रोग के जांच आ इलाज करैत अछि।
2: एहिठाम महिला स्त्री एवं प्रसूति पुरुष आ बाल रोग संबंधी जाँच आ इलाज करैत अछि।
4: सेवा आ सुविधा सब
3: 24 घंटा इमरजेंसी आ एम्बुलेंस सेवा ओपीडी मेडिसिन सेवा
4: ऑपरेशन सेवा चर्म रोग हार्ट जर्नी डायबिटीज
3: होल बॉडी जांच सीटी स्कैन आईसीयू एनआईसीयू ओटी
2: डिजिटल एक्सरे एसी नॉन एसी केबिन के सुविधा है।
4: संपर्क कर जाए
3: यूनिक अस्पताल रुपनी रायपुर आ यूनिक सिटी अस्पताल राजविराज 6 गणेश मंदिर नजदीक।
4: फोन
3: 031-530-7076
4: मोबाइल
3: 9805-60800 आ एम्बुलेंस के नंबर 9805-56205 9805-56202।
5: फिरता फिरता 20% समक्या सुफिरता जैले पनी चाहा पनी
6: क्याश फिरता लिनु भए त
7: एनसेल प्याक किन्नु भए त जहिले पनि जहाँ पनि प्याक खरिद गर्नुहोस् अनि 20% सम्म क्याश फिर्ता एनसेल एपमा क्लेम गर्नुहोस्। एनसेल प्याक किन्नु भए त शर्तहरू लागू हुनेछन्। एनसेल नेपालकै लागि।

0: extreme energy drink.
1: अपने साथ दूर रहती बोलो कुमार ये

0: मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि जिसने कभी मुझसे बेपनाह प्यार किया हो वो इतना पत्थर दिल भी हो सकता है।
1: जरा सोचो, इसके लिए सिर्फ मैं ही कसूरवार नहीं, तुम भी हो। तुम भी,
0: तुम नहीं जानते कि तुम मुझे कितना दर्द दे रहे हो। ये दर्दी मोहब्बत, ये जुदाई, हाय मुझे मौत की ना।
1: मैं तो जीते जी मर रहा हूँ, मेरा कुछ नहीं।
0: मैं किसी और मसीहा का पता क्यों चाहूँ? दर्द जब तुमने दिया है तो दवा क्यों चाहूँ?

0: नवरत्न कुल ओइलको 2 मिनेटको मालिसले राख्छ तपाईँलाई कुल, दिलाउँछ गर्मी, टाउको दुखाइ, थकान अनि अनिन्द्राबाट आराम। नवरत्न वर्ल्ड नम्बर 1 कुल ओइल, चिसो चिसो कुल कुल।
1: यै सुनु
2: के कहै छ,
1: हम जाइ छी तिरुपति ट्रेडर्स में, ओइ ठाम सीजन अनुसार के सब ब्यू विजन भेटै छै, खरीद लेबै आ चलि अयबै।
2: एकटा रोटावेटर के ऑर्डर सेहो दे देबै।
1: हेतै
3: तिरुपति ट्रेडर्स राज विराज।
4: जी हाँ, एहिठाम विभिन्न प्रकारक औद्योगिक मशीन उचित दाम में उपलब्ध है।
2: चप्पल बनाबे वाला मशीन,
4: मुर्गा दाना बनाबे वाला मशीन आ माछ उत्पादन के लेल कृषि औजार सामान सब,
2: पावर ट्रेलर,
4: थ्रेसर,
2: रोटावेटर,
4: कम्पाइन, धान आ गहूँ काटे वाला मशीन,
2: रोपे वाला मशीन,
4: स्प्रे, मिल सेट, जेनरेटर,
2: कृषि औजार, स्पेयर पार्ट
4: आ बोरिंग सामान संगे घर निर्माण आ हार्डवेयर संबंधी संपूर्ण सामान उपलब्ध है।
3: तिरुपति ट्रेडर्स एंड सप्लायर्स, कंचनपुर रोड, राजविराज 8,
4: प्रोप्राइटर अशोक कुमार यादव।
3: मोबाइल
4: 9807788897 आ 9847452178।
5: एखन अपने सब सुन रहल छी भोरकवा FM 92.8 MHz।

0: এখন ভরকা এফএম মা দিনকে এক বাজল राज विराज में आप सब प्रत्येक दिन वरिष्ठ छाला यौन रोग तथा सौंदर्य विशेषज्ञ डॉक्टर रंजू पोखरेल MBBS MD डर्माटोलॉजिस्ट द्वारा जांच इलाज भ रहल अछि।
1: जो एहन कोनो समस्या अछि तो निक आ प्रभावकारी इलाज के लेल अनुभवी डॉक्टर रंजू पोखरेल के क्लिनिक सरिता मेडिकल हॉल में संपर्क करू।
0: याद राखू, सरिता मेडिकल हॉल सरकारी अस्पताल के पश्चिम गेट में।
1: फोन नंबर 9800118978।
2: एनसेल प्याक किन्नु भयो त? जहिले पनि जहाँ पनि प्याक खरिद गर्नुहोस् अनि 20% सम्म क्यास फिर्ता एनसेल एपमा क्लेम गर्नुहोस्। एनसेल प्याक किन्नु भयो त? शर्तहरू लागू हुनेछन्। एनसेल नेपालकै लागि।

नवरत्न कूल ऑयल को 2 मिनट को मालिश ले रख्छ तपाईलाई कूल दिलाउँछ गर्मी टाउको दुखाइ थकान अनि अनिद्राबाट आराम नवरत्न वर्ल्ड नम्बर 1 कूल ऑयल चिसो चिसो कूल कूल

0: Mania Extreme Energy Drink.
1: अपाङ्गता भेल व्यक्ति, बाल बालिका, ज्येष्ठ नागरिक आ बिरामी के विशेष ध्यान देबाक चाही।
2: आइ काल्हि अत्यधिक गर्मी आ गरम हवा चल वाला समय अछि। ताई एहन अवस्था में जर एनाई, उल्टी जका लगनाई, थकान लगनाई, बेसी प्यास लगनाई, धड़कन बढ़नाई, श्वास प्रश्वास में समस्या भेनाई, अत्यधिक माथ दुखेनाई, बेहोश भेनाई, मांसपेशी सब दुखेनाई, उल्टी भेनाई जेहन समस्या सब देखल जा सकत अछि।
1: गरम हवा के प्रभाव तथा लू लागत से बचा वाला उपाय सब
2: जूस शरबत आदि प्रशस्त मात्रा में पियल जाओ।
1: दिन भर प्रशस्त पानी आ झोर वाला चीज सब सेवन कैल जाए।
2: हल्का ढीला आ सूती के कपड़ा सब लगावल जाए।
1: संभवतः ठंडा स्थान में बैसल जाए।
2: दोपहर के समय में अनावश्यक घर से बाहर नहीं जाओ।
1: बाहर जाइए पर छाता टोपी चश्मा आ पंजा प्रयोग कैल जाए।
2: खाली पेट बाहर नहीं जाओ।
1: दोपहर के समय में कड़ा शारीरिक परिश्रम नहीं कैल जाए।
2: स्वास्थ्य संबंधी कोनो प्रकार के समस्या देखल जाता है तो स्वास्थ्य कर्मी संग नियमित संपर्क में रह अनुरोध कैल जाता है। सबल नेपाल आ समावेशी अपांग संग सप्तरीक साझेदारी तथा CBM ग्लोबल के सहयोग में संचालित अपांगता समावेशी विपद जोखिम न्यूनीकरण परियोजना द्वारा जनहित में जारी संदेश।
3: अपने साथ रहती बोलकबा।

0: भित्र रहेका कुपनहरू हल्का प्लस रमाइलोलाई मिलाउनुहोस् र प्राप्त गर्नुहोस् एक प्याकेट मामा चाउचाउ सित्तैमा।
1: मामासँग हल्का रमाइलो।
2: हे कनिया, अहाँको गहना बडा सुन्दर यो, डिजाइनो नयाँ, कता बनेलिए?
3: हे काव्या ज्वेलर्स राजविराजमा बनेलिए। ओतऽ आधुनिक डिजाइनका सोना चाँदीका गर गहना, अर्डर बमोजिमका गहना गारेन्टीके साथ बनबै छी आ नवग्रहका पत्थर सेहो भेटै छै।
4: काव्या ज्वेलर्स राजविराज साथ मेन रोड अदालत के पूर्व, प्रोप्राइटर सोनी कुमारी साह आ सुनील साह, मोबाइल 98 97 40 445।
5: सम्पूर्ण सुविधा सँग सम्पन्न युनिक अस्पताल रायपुर रुपनी आ युनिक सिटी अस्पताल राजविराज।
6: अब बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान, वीर अस्पताल काठमांडू, एम्स अस्पताल दिल्ली के दक्ष एवं अनुभवी विशेषज्ञ डॉक्टर सब द्वारा हर प्रकारक रोग के जांच आ इलाज करैत अछि।
5: एहिठाम महिला, स्त्री एवं प्रसूति, पुरुष आ बाल रोग संबंधी जांच आ इलाज करैत अछि।
2: सेवा आ सुविधा सब
6: 2400 घंटा इमरजेंसी।

0: अक्लेम गर्नुहोस्। एनसेल प्याक किन्नुभयो त शर्तहरू लागू हुनेछन्। एनसेल नेपालकै लागि।
1: कृष्णा पार्टी प्यालेस एन्ड लज राजविराट, ओहिठाम हरेक शुभ कार्य विवाह मुण्डन हरेक दृष्टिकोण सँ सुविधा सम्पन्न छ।
2: राजविराज के साथ कृष्णा पार्टी प्यालेस नाम
3: अपने शहर राजविराज में सुविधा सम्पन्न कृष्णा पार्टी प्यालेस एन्ड लज।
2: हरेक शुभ कार्य शुभ विवाह उपनयन मुंडन आ पार्टी के लेल सुविधा संपन्न
3: कृष्णा पार्टी पैलेस। एहिठाम आकर्षक सजावट सहित एसी नॉन एसी डीलक्स आ कॉमन रूम,
2: 24 घंटा बिजली सुविधा, स्वच्छ खाने पानी,
3: शांत वातावरण में विवाह स्थल सेमिनार तालीम हॉल के व्यवस्था है,
2: टेबल कुर्सी आ कैटरिंग के व्यवस्था।
3: बुकिंग के लिए संपर्क करी कृष्णा पार्टी पैलेस एंड लॉज, 33 राजविराज सप्तरी,
2: मोबाइल
3: 9807448454 आ 9848222430।

0: नवरत्न कुल ओइलको 2 मिनटको मालिसले राख्छ तपाईँलाई कुल, दिलाउँछ गर्मी, टाउको दुखाई, थकान अनि अनिन्द्राबाट आराम। नवरत्न वर्ल्ड नम्बर 1 कुल ओइल, चिसो चिसो कुल कुल।
1: एकटा खुसीको खबर छौ।
2: कथि छौ? सु
1: विदेश से छुट्टी में आयल आदमी सब के श्रम स्वीकृति के काम अब राज विराज में चालू भ गेल छी। आंख के फोटो आ फिंगरप्रिंट के लेल कतो बाहर नहीं जा पड़तो।
3: जी हाँ, अली कम्युनिकेशन
4: एठम विदेश जवाक लेल श्रम स्वीकृति के काम, देश विदेश के लेल हवाई टिकट बुकिंग आ टिकट के डेट चेंज, भारत के लेल रेलवे टिकट बुकिंग,
3: विदेश सेवा के लेल ओरिएंटेशन कक्षा, मेडिकल जांच, कतार आ दुबई के लेल विजिट वीजा एवं विदेश में चिट्ठी पत्र पठेबाक लेल कुरियर सेवा उपलब्ध अछि।
4: नया पासपोर्ट बनेबाक लेल ऑनलाइन केनाई आ विदेश जाय वाला के लेल राष्ट्रीय परिचय पत्र के फ्री ऑनलाइन फॉर्म भरनाई के संगे हरेक कंपनी के मोबाइल थोक दर में बिक्री आ मरम्मत करैत अछि।
3: संपर्क
4: अली कम्युनिकेशन एंड ट्रैवल्स, चतुर्भुज मार्केट, मेन रोड, लोहार गली, राजविराज 4, सप्तरी।
3: फोन
4: 0315325575,
3: मोबाइल
4: 9801502475।

0: extreme energy drink.
1: एखन अपने सब सुन रहल छी भोरकवा FM 92.8 MHz।

0: बाढ़ के मौसम में सतर्क रहू आ सुरक्षित रहू। बाढ़ कोनो बखत आबि सकैत अछि, ताहि प्रतिकार के लेल तैयार रहू।
1: जल तथा मौसम विज्ञान विभाग DHM द्वारा नेपाल के विभिन्न भाग में औसत से बेसी वर्षा होबाक पूर्वानुमान कयल गेल अछि, जै कारण बाढ़ आ कटान के जोखिम बढ़ सकैत अछि।
0: सतर्क रहि कऽ आवश्यक जानकारी प्राप्त करू आ स्थानीय सूचना सब के पालन करू। अहाँ के सुरक्षा अहीं के जानकारी पर निर्भर अछि।
1: बाढ़ के जोखिम भेला पर ई उपाय सब अपनाओल जाओ।
0: जल तथा मौसम विज्ञान विभाग, वडा कार्यालय, स्थानीय सरकार तथा विपद जोखिम न्यूनीकरण संबंधी जिम्मेवार व्यक्ति सब प्राप्त बाढ़ संबंधी जानकारी आ चेतावनी के ध्यान पूर्वक सुनू आ तही अनुसार उपयुक्त निर्णय लिअ।
1: नजदीक रहल नदी खोला में पानिक बहाव के नियमित रूप में अनुगमन करू। नदी किनार या बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में वसवास कर रहल छी तो सुरक्षित आश्रय स्थल या उचगर स्थान में रहू आ सुरक्षित रूप से निकले वाला रास्ता बाट खोजू।
0: सूचना द्वारा चेतावनी जारी भेल तो देर नहीं कर तुरंत सुरक्षित स्थान में जेबाक लेल तैयार रहू।
1: अति आवश्यक सामान जना कि टॉर्च लाइट, मोबाइल फोन, चार्जर, दवाई, सूखा खाए वाला सामान, सफा पीबा वाला पानी, नगद रुपया, नागरिकता, पासपोर्ट लगायत अन्य प्रमाण पत्र सब झटपट झोला में तैयारी अवस्था में राखू। झटपट झोला का घर भीतर जल्दी पहुँचा वाला आ तुरंत लो जा सके वाला स्थान में राखू।
0: अपन संपत्ति के सुरक्षा करू, संभव अछि तो बहुमूल्य सामान आ चौपाया के उचगर स्थान में लो जाओ।
1: दूसरों के मदद करू, बाल बालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा अपंगता भेल व्यक्ति सब के आवश्यक सहयोग करू। गर्भवती, सुतकेरी आ स्तनपान करा रहल माई के लेल सुरक्षित वास के व्यवस्था करू। ओ सब के लेल सकभर अलगे आ सुरक्षित चर्पी के प्रबंध करू।
0: विपद के बाद होवा वाला सर्पदंश तथा पानी जन्य संक्रामक रोग के जोखिम रहला सँ सचेत रहू। ई सूचना परिवार, पड़ोसी आ जन समुदाय में जानकारी कराओ।
1: बाढ़ दरवाजा तक आबि जाय ऐसे पहिने ही तैयार रहू आ आइए से सतर्क भ जाओ।
0: ई संदेश अंतर्राष्ट्रीय एकीकृत पर्वतीय विकास केंद्र ईसी मोड अंतर्गत के हाईग्रिड परियोजना द्वारा ऑस्ट्रेलियन सरकार आ सबल नेपाल के सहयोग में प्रसारण कयल गेल अछि।
2: चेतावनी सुनो, तुरंत निर्णय लिया आ सुरक्षित रहू।
3: फिरता फिरता 20% समस्या सुफिरता सहीले पनि चाह पनि
4: क्याश फिरता लिनु भए त
5: एनसेल प्याक किन्नु भए त जहिले पनि जहाँ पनि प्याक खरीद गर्नुहोस् अनि 20% सम्म क्याश फिरता एनसेल एपमा क्लेम गर्नुहोस्। एनसेल प्याक किन्नु भए त शर्तहरू लागू हुनेछन्। एनसेल नेपालकै लागि।

0: नवरत्न कूल ऑयल को 2 मिनटको मालिसले रक्षा तपाईलाई कूल दिलाउँछ, गर्मी टाउको दुखाइ थकान अनि अनिन्द्राबाट आराम। नवरत्न वर्ल्ड नम्बर 1 कूल ऑयल, चिसो चिसो कूल कूल।
1: एकखन भरकवा एफएम मा दिन के 2 बजल

0: राज विराज में आप सब प्रत्येक दिन वरिष्ठ छाला यौन रोग तथा सौंदर्य विशेषज्ञ डॉक्टर रंजू पोखरेल MBBS MD डर्माटोलॉजिस्ट द्वारा जांच इलाज भ रहल अछि।
1: जँ एहन कोनो समस्या अछि तऽ नीक आ प्रभावकारी इलाज के लेल अनुभवी डॉक्टर रंजू पोखरेल के क्लिनिक सरिता मेडिकल हॉल में संपर्क करू।
0: याद राखू, सरिता मेडिकल हॉल सरकारी अस्पताल के पश्चिम गेट में।
1: फोन नंबर 9890811978।
2: हे कनिया, अहाँ के गहना बड़ा सुंदर या डिजाइनो नया कत बनेलिए?
3: ये काव्या ज्वेलर्स राज विराज में बनेलिए। ओत आधुनिक डिजाइन का सोना चांदी का गर

0: हाँ, ड्रेसिंग टेबल, बाघ पंजा, सोफा सेट।
1: जी हाँ, शादी विवाह आ ऑफिस के लेल संपूर्ण सामान आधुनिक मशीन से कंप्यूटर के डिजाइन अनुसार फर्नीचर तैयार कैल जाए छे।
0: 5x6 फीट के फुल बुटा के बॉक्स पलंग शादी सेट 35,000 आ 6x7 फीट के शादी सेट बॉक्स पलंग 45,000 में भ जाए। संगे मॉडल किचन खरात कार्विन के व्यवस्था छे। पलाई फोर्मिका रेडीमेड ढोका हैंडल हत्था कांटी कब्जा स्प्रिट चपरा आ शीशा लगात फर्नीचर के संपूर्ण सामान उपलब्ध।
1: प्रोपराइटर शंभु सुथियार।
0: जय श्री हनुमान ट्रेडर्स, राजविराज 1 कंचनपुर रोड नहर चौक चूड़ा मिल के बगल में।
1: मोबाइल
0: 9807040070 आ 9868-66270।
2: फिरता फिरता 20% समस्या फिरता सही पानी चाह पानी
3: कैश फिरता लिनु भयता
4: एनसेल पैक किन्नु भयता जहिले पनि जहाँ पनि पैक खरीद गर्नुहोस् अनि 20% सम्म क्याश फिरता एनसेल एप मा क्लेम गर्नुहोस्। एनसेल पैक किन्नु भयता शर्तहरू लागू हुनेछन्। एनसेल नेपालकै लागि।

0: कुल ओइलको दुई मिनटको मालिसले राख्छ तपाईँलाई कुल, दिलाउँछ गर्मी, टाउको दुखाई, थकान अनि अनिन्द्राबाट आराम। नवरत्न वर्ल्ड नम्बर वन कुल ओइल, चिसो चिसो कुल कुल।
1: कतेक दर्द करे छे, ठेहुन भीने आ नस फूल जाय छे।
2: की भ गेला से?
1: ओ बुआ, नस फूल गेले आ ठेहुन के जोड़ से दर्द करे छे।
3: आप चिंता नहीं करो, चलो मंडल जी के क्लिनिक राजविराज में
2: डॉक्टर रिधिनाथ प्रसाद मंडल से जांच करा दे छियो।
4: एरो आ हमारे डाढ़ का नस बड़ दुखाइया बारे, ठीक भ जाते ना?
2: पूरे ठीक भ जाते।
5: जी हाँ, हाड़ जोड़नी तथा नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रिधिनाथ प्रसाद मंडल MBBS MS।
6: हर प्रकारक टूटल हड्डी जोड़नाए, प्लास्टर, ऑपरेशन आ नस रोग संबंधी जांच आ इलाज करैत अछि। संपर्क कैल जाए।
5: हाड़ जोड़नी तथा नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रिधिनाथ प्रसाद मंडल, नर्मदा अर्थो केयर सेंटर, राजविराज, नेता चौक से दक्षिण, हीरा फार्मेसी।
6: मोबाइल 9847996749 आ 9817930096। आब अपने निवास सप्तरी सेवा आश्रम वेटनरी अस्पताल से पश्चिम 2400 घंटा लैब आ फार्मेसी सुविधा के साथ सेवा दर आल।
7: ओ मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे दई।
6: नीम करोली बाबा के जीवनी पर आधारित आ 175 करोड़ से बेसी के कारोबार विश्व भर में करो में सफल फिल्म हनुमान अंश शिव शंकर सिनेमा राजविराज में चल रहल अछि। फिल्म हनुमान अंश,
8: हिंदी फिल्म हनुमान अंश, सब परिवार आब देखू आ बाबा नीम करोली के जीवनी से प्रेरित हो फिल्म हनुमान अंश।

0: Media and Extreme Energy Drink.
1: अपाङ्गता भेल व्यक्ति, बाल बालिका, ज्येष्ठ नागरिक आ बिरामी के विशेष ध्यान देबाक चाही।
2: आइ काल्हि अत्यधिक गर्मी आ गरम हवा चल वाला समय अछि। ताइ एहन अवस्था में जर एनाय, उल्टी जका लगनाय, थकान लगनाय, बेसी प्यास लगनाय, धड़कन बढ़नाय, श्वास प्रश्वास में समस्या भेनाय, अत्यधिक माथ दुखेनाय, बेहोश भेनाय, मांसपेशी सब दुखेनाय, उल्टी भेनाय जेहन समस्या सब देखल जा सकत अछि।
1: गरम हवा के प्रभाव तथा लू लागत से बचे वाला उपाय सब
2: जूस शरबत आदि प्रशस्त मात्रा में पियल जाओ।
1: दिन भर प्रशस्त पानी आ झोर वाला चीज सब सेवन कैल जाए।
2: हल्का ढीला आ सूती के कपड़ा सब लगावल जाए।
1: संभवतः ठंडा स्थान में बैसल जाए।
2: दोपहर के समय में अनावश्यक घर से बाहर नहीं जाओ।
1: बाहर जाइए पर छाता टोपी चश्मा आ पंजा प्रयोग कैल जाए।
2: खाली पेट बाहर नहीं जाओ।
1: दोपहर के समय में कड़ा शारीरिक परिश्रम नहीं कैल जाए।
2: स्वास्थ्य संबंधी कोनो प्रकार के समस्या देखल जाए स्वास्थ्य कर्मी संग नियमित संपर्क में रह अनुरोध कैल जाए। सबल नेपाल आ समावेशी अपांग संग सप्तरीक साझेदारी तथा CBM ग्लोबल के सहयोग में संचालित अपांगता समावेशी विपद जोखिम न्यूनीकरण परियोजना द्वारा जनहित में जारी संदेश।

0: आफ्नो कुल ओइलको दुई मिनटको मालिसले राख्छ तपाईँलाई कुल, दिलाउँछ गर्मी, टाउको दुखाइ, थकान अनि अनिन्द्राबाट आराम। नवरत्न वर्ल्ड नम्बर वन कुल ओइल, चिसो चिसो कुल कुल।
1: कतेक दर्द करै छै, ठेहुन भीने आ नस फुलि जाइ छै।
2: की भ गेला से?
1: ओ बौआ, नस फुलि गेलै आ ठेहुन के जोर से दर्द करै छै।
3: आप चिंता नहीं कर, चलो मंडल जी के क्लिनिक राजविराज में
2: डॉक्टर रिधिनाथ प्रसाद मंडल से जांच करा दे छियै।
4: रो आ हमारे डाड का नस बड़ दुखाइया बारे, ठीक भ जतै न?
2: पूरे ठीक भ जतै।
5: जी हाँ, हाड़ जोड़नी तथा नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रिधिनाथ प्रसाद मंडल MBBS MS।
6: हर प्रकारक टूटल हड्डी जोड़नाए, प्लास्टर, ऑपरेशन आ नस रोग संबंधी जांच आ इलाज करैत अछि। संपर्क कैल जाए।
5: हाड़ जोड़नी तथा नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रिधिनाथ प्रसाद मंडल, नर्मदा अर्थो केयर सेंटर, राजविराज, नेता चौक दक्षिण, हीरा फार्मेसी।
6: मोबाइल 98497।

0: Media.
1: Extreme Energy Drink.
2: यही सुनू
3: की कहे छे?
2: हम जाए छी तिरुपति ट्रेडर्स में, वही ठाम सीजन अनुसार के सब ब्यू विजन भेटे छे, खरीद लेबे आ चल अबे।
3: एकटा रोटावेटर के ऑर्डर सेहो दे देबे।
2: हेते
4: तिरुपति ट्रेडर्स राज विराज।
5: जी हाँ, एहिठाम विभिन्न प्रकारक औद्योगिक मशीन उचित दाम में उपलब्ध है।
4: चप्पल बनावे वाला मशीन,
5: मुर्गा दाना बनावे वाला मशीन आ माछ उत्पादन के लेल कृषि औजार सामान सब,
3: पावर ट्रेलर,
5: थ्रेसर,
3: रोटावेटर,
5: कम्पाइंड, धान आ गहूँ काटे वाला मशीन,
3: रोपे वाला मशीन,
5: स्प्रे, मिल सेट, जेनरेटर,
3: कृषि औजार, स्पेयर पार्ट्स
5: आ बोरिंग सामान संगे घर निर्माण आ हार्डवेयर संबंधी संपूर्ण सामान उपलब्ध है।
4: तिरुपति ट्रेडर्स एंड सप्लायर्स, कंचनपुर रोड, राजविराज 8,
5: प्रोप्राइटर अशोक कुमार यादव।
4: मोबाइल
5: 9807788897 आ 9847452178।
6: अखन अपने साथ रहिए बोलकवा।

0: এখন ভরকওয়া এফএম দিনকে চার বাজল राजविराज में आप सब प्रत्येक दिन वरिष्ठ छाला यौन रोग तथा सौंदर्य विशेषज्ञ डॉक्टर रंजू पोखरेल MBBS MD डर्माटोलॉजिस्ट द्वारा जांच इलाज भ रहल अछि।
1: जँ एहन कोनो समस्या अछि तऽ नीक आ प्रभावकारी इलाज के लेल अनुभवी डॉक्टर रंजू पोखरेल के क्लिनिक सरिता मेडिकल हॉल में संपर्क करू।
0: याद राखू, सरिता मेडिकल हॉल सरकारी अस्पताल के पश्चिम गेट में।
1: फोन नंबर 9890811978।
2: एनसेल प्याक किन्नु भयो त? जहिले पनि जहाँ पनि प्याक खरिद गर्नुहोस् अनि 20% सम्म क्यास फिर्ता एनसेल एपमा क्लेम गर्नुहोस्। एनसेल प्याक किन्नु भयो त? शर्तहरू लागू हुनेछन्। एनसेल नेपालकै लागि।

0: मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि जिसने कभी मुझसे बेपनाह प्यार किया हो वो इतना पत्थर दिल भी हो सकता है।
1: जरा सोचो, इसके लिए सिर्फ मैं ही कसूरवार नहीं, तुम भी हो। तुम भी,
0: तुम नहीं जानते कि तुम मुझे कितना दर्द दे रहे हो। ये दर्दी मोहब्बत, ये जुदाई, हाय मुझे मौत की ना आए।
1: मैं तो जीते जी मर रहा हूँ, मेरा कुछ नहीं।
0: मैं किसी और मसीहा का पता क्यों चाहूँ? दर्द जब तुमने दिया है तो दवा क्यों चाहूँ?

0: सम्पूर्ण सुविधासँग सम्पन्न युनिक अस्पताल रायपुर रुपनी आ युनिक सिटी अस्पताल राजविराज
1: अब बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरन वीर अस्पताल काठमांडू एम्स अस्पताल दिल्ली के दक्ष एवं अनुभवी विशेषज्ञ डॉक्टर सब द्वारा हर प्रकार रोग के जांच आ इलाज करते
0: ऐठाम महिला स्त्री एवं प्रसूति पुरुष आ बाल रोग संबंधी जांच आ इलाज करते
2: सेवा आ सुविधा सब
1: 24 घंटा इमरजेंसी आ एम्बुलेंस सेवा ओपीडी मेडिसिन सेवा
2: ऑपरेशन सेवा चर्म रोग हार्ट जर्नी डायबिटीज
1: होल बॉडी जांच सीटी स्कैन आईसीयू एनआईसीयू ओटी
0: डिजिटल एक्सरे एसी नॉन एसी कैबिन के सुविधा है
2: संपर्क कर जाए
1: यूनिक अस्पताल रुपनी रायपुर आ यूनिक सिटी अस्पताल राजविराज 6 गणेश मंदिर नजदीक
2: फोन
1: 031-530-7076
2: मोबाइल
1: 9805-60800 आ एम्बुलेंस के नंबर 9805-56205 9805-56202
2: एता कोनो सुविधा संपन्न जगह नहीं छै
3: छै ना त कृष्णा पार्टी पैलेस एंड लॉज राजविराज ओइ ठाम हरेक शुभ कार्य विवाह मुंडन हरेक दृष्टि कोण से सुविधा संपन्न छै
0: राजविराज के साथ कृष्णा पार्टी पैलेस नाम
1: अपने शहर राजविराज में सुविधा संपन्न कृष्णा पार्टी पैलेस एंड लॉज
0: हर एक शुभ कार्य शुभ विवाह उपनयन मुंडन आ पार्टी के लेल सुविधा संपन्न
1: कृष्णा पार्टी पैलेस ऐठम आकर्षक सजावट सहित एसी नॉन एसी डिलक्स आ कॉमन रूम
0: 24 घंटा बिजली सुविधा स्वच्छ खाने पानी
1: शांत वातावरण में विवाह स्थल सेमिनार तालीम हॉल के व्यवस्था है
0: टेबल कुर्सी आ कैटरिंग के व्यवस्था
1: बुकिंग के लिए संपर्क करी कृष्णा पार्टी पैलेस एंड लॉज 33 गाछी राजविराज सप्तरी
0: मोबाइल
1: 9847-48-454 आ 9848-22-430

0: पेश जाय वाला के लिए राष्ट्रीय परिचय पत्र के फ्री ऑनलाइन फॉर्म भरना के संगे हरेक कंपनी के मोबाइल थोक दर में बिक्री आ मरम्मत करे छै।
1: संपर्क
0: अली कम्युनिकेशन एंड ट्रैवल्स, चतुर्भुज मार्केट, मेन रोड, लोहार गली, राजविराज 4, सप्तरी।
1: फोन
0: 031-532-575,
1: मोबाइल
0: 98015-02।

0: extreme energy drink.
1: एखन अपने सब सुन रहल छी भोरकवा FM 92.8 MHz।

0: बाढ़ के मौसम में सतर्क रहू आ सुरक्षित रहू। बाढ़ कोनो बखत आबि सकैत अछि, ताहि प्रतिकार के लेल तैयार रहू।
1: जल तथा मौसम विज्ञान विभाग DHM द्वारा नेपाल के विभिन्न भाग में औसत से बेसी वर्षा होबाक पूर्व अनुमान कयल गेल अछि, जै कारण बाढ़ आ कटान के जोखिम बढ़ सकैत अछि।
0: सतर्क रह कर आवश्यक जानकारी प्राप्त करू आ स्थानीय सूचना सब के पालन करू। अहाँ के सुरक्षा अही के जानकारी पर निर्भर अछि।
1: बाढ़ के जोखिम भेला पर ई उपाय सब अपनावल जाओ।
0: जल तथा मौसम विज्ञान विभाग, वडा कार्यालय, स्थानीय सरकार तथा विपद जोखिम न्यूनीकरण संबंधी जिम्मेवार व्यक्ति सब प्राप्त बाढ़ संबंधी जानकारी आ चेतावनी के ध्यान पूर्वक सुनू आ तही अनुसार उपयुक्त निर्णय लिय।
1: नजदीक रहल नदी खोला में पानिक बहाव के नियमित रूप में अनुगमन करू। नदी किनार या बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में बसोबास कर रहल छी त सुरक्षित आश्रय स्थल या उचगर स्थान में रहू आ सुरक्षित रूप से निकले वाला रास्ता बाट खोजू।
0: सूचना द्वारा चेतावनी जारी भेल त देर नहीं कर तुरंत सुरक्षित स्थान में जेबाक लेल तैयार रहू।
1: अति आवश्यक सामान जना कि टॉर्च लाइट, मोबाइल फोन, चार्जर, दवाई, सूखा खाय वाला सामान, सफा पीब वाला पानी, नगद रुपया, नागरिकता, पासपोर्ट लगायत अन्य प्रमाण पत्र सब झटपट झोला में तैयारी अवस्था में राखू। झटपट झोला का घर भीतर जल्दी पहुँचा वाला आ तुरंत लौ जा सके वाला स्थान में राखू।
0: अपन संपत्ति के सुरक्षा करू, संभव अछि त बहुमूल्य सामान आ चौपाया के उचगर स्थान में लौ जाओ।
1: दोसरों के मदद करू, बाल बालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा अपंगता भेल व्यक्ति सब के आवश्यक सहयोग करू। गर्भवती, सुतकेरी आ स्तनपान करा रहल माय के लेल सुरक्षित वास के व्यवस्था करू। ओ सब के लेल सकभर अलगे आ सुरक्षित चर्पी के प्रबंध करू।
0: विपद के बाद होवा वाला सर्पदंश तथा पानी जन्य संक्रामक रोग के जोखिम रहला सँ सचेत रहू। ई सूचना परिवार, पड़ोसी आ जन समुदाय में जानकारी कराओ।
1: बाढ़ दरवाजा तक आबि जाए ऐसे पहिने तैयार रहू आ आइए से सतर्क भ जाओ।
0: ई संदेश अंतर्राष्ट्रीय एकीकृत पर्वतीय विकास केंद्र ईसी मोड अंतर्गत के हाईग्रिड परियोजना द्वारा ऑस्ट्रेलियन सरकार आ सबल नेपाल के सहयोग में प्रसारण कयल गेल अछि।
2: चेतावनी सुनो, तुरंत निर्णय लिया आ सुरक्षित रहू।
3: फिरता फिरता 20% समक्यास फिरता सहले पानी चाहा पानी
4: कैश फिरता लिनु भएता
5: एनसेल पैक किन्नु भएता जहिले पनि जहाँ पनि प्याक खरिद गर्नुहोस् अनि 20% सम्म क्याश फिरता एनसेल एपमा क्लेम गर्नुहोस्। एनसेल पैक किन्नु भएता शर्तहरू लागू हुनेछन्। एनसेल नेपालकै लागि।

0: Media एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक।
1: अपाङ्गता भेल व्यक्ति, बाल बालिका, ज्येष्ठ नागरिक आ बिरामी के विशेष ध्यान देबाक चाही।
2: आइ काल्हि अत्यधिक गर्मी आ गरम हवा चल वाला समय अछि। ताइ एहन अवस्था में जर एनाय, उल्टी जकाँ लगनाय, थकान लगनाय, बेसी प्यास लगनाय, धड़कन बढ़नाय, श्वास प्रश्वास में समस्या भेनाय, अत्यधिक माथ दुखेनाय, बेहोश भेनाय, मांसपेशी सब दुखेनाय, उल्टी भेनाय जेहन समस्या सब देखल जा सकत अछि।
1: गरम हवा के प्रभाव तथा लू लागत से बचे वाला उपाय सब
2: जूस शरबत आदि प्रशस्त मात्रा में पियल जाओ।
1: दिन भर प्रशस्त पानी आ झोर वाला चीज सब सेवन कैल जाए।
2: हल्का ढीला आ सूती के कपड़ा सब लगावल जाए।
1: संभवतः ठंडा स्थान में बैसल जाए।
2: दोपहर के समय में अनावश्यक घर से बाहर नहीं जाओ।
1: बाहर जाइए पर छत्ता टोपी चश्मा आ पंजा प्रयोग कैल जाए।
2: खाली पेट बाहर नहीं जाओ।
1: दोपहर के समय में कड़ा शारीरिक परिश्रम नहीं कैल जाए।
2: स्वास्थ्य संबंधी कोनो प्रकार के समस्या देखल जाता है तो स्वास्थ्य कर्मी संग नियमित संपर्क में रह अनुरोध कैल जाता है। सबल नेपाल आ समावेशी अपांग संग सप्तरीक साझेदारी तथा CBM ग्लोबल के सहयोग में संचालित अपांगता समावेशी विपद जोखिम न्यूनीकरण परियोजना द्वारा जनहित में जारी संदेश।
3: एखन भोरकवा FM दिन के 5 बाजल।

हाय हेलो गुड इभिनिङ, स्वागत अछि भरकवा एफएम 92.8 MHz के तरंग पर गुंज रहल कार्यक्रम हेलो भरकवा लग आबि गेल छी। हम सीमा प्राविधिकमे साथ दऽ रहल छथि। हमी जी श्रोता मित्र, कार्यक्रम अहाँ सब सुनि सकै छी प्रत्येक रवि दिनसँ लऽ कऽ शुक्र दिन धरि साँझके 5 बजेसँ लऽ कऽ 6 बजे तक 1 घंटा धरि रहै छी अहाँ सबके सङ्गमे। एहि कार्यक्रमके मार्फत अहाँ सब सुनि सकै छी, अपन मनपसन्द गीत सङ्गीत साथी सङ्गीत सबके याद कऽ सकै छी। डायल करऽ प्रथम के स्टूडियोके नम्बर 0131531717। श्रोता मित्र, अहाँ सब विदेशमे छी, इच्छा अछि भोरकवा एफएम 92.8 MHz के तरंग पर गुंजि रहल कार्यक्रम हेलो भोरकवाके मार्फतसँ सुनी, अपन मनपसन्द गीत सङ्गीत साथी सङ्गीत सबके याद करैत अहूँ सब फोन कऽ सकै छी। बस एकटा कोड थपऽ पड़त, नम्बर सेम अछि, कोड अछि 00977, नम्बर अछि 3153171717। अहाँ सब नेट के माध्यम सँ सेहो हमरा सबके सॉन्ग में जुड़ सकै छी। ओहिके लेल लॉग इन करऽ पड़त www.bhorakwaefm.org.np। लॉग इन कऽ कऽ कार्यक्रम हेलो भोरकवा के ऑनलाइन माध्यम सँ प्रसारण देख सकै छी, सुनि सकै छी आ जुड़ सकै छी हमरा सबके संग में कार्यक्रम हेलो भोरकवा में। हमरो पात्र पर सेहो उपलब्ध अछि भोरकवा एफएम 92.8 MHz। श्रोता मित्र, अहाँ सबके सॉन्ग में एंड्रॉइड मोबाइल तब पक्के हेबे करत, फटाफट म्यूजिक मैथिली ऐप डाउनलोड करू आ जरूर हमरा सबके संग में कार्यक्रम हेलो भोरकवा में। संसार के कोनो कोन सा भोरकवा एफएम 92.8 MHz के तरंग पर गुंज रहल कार्यक्रम हेलो भोरकवा के मार्फत सँ सुनऽ चाहै छी, अपन मनपसंद गीत संगीत साथी संगीत सबके याद करऽ चाहै छी, कमेंट पठबा के इच्छा अछि पठा सकै छी। ओहि के लेल भोरकवा एफएम के यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइब कऽ कऽ कमेंट पठबा पड़त श्रोता मित्र। तऽ देखू सुनू, लाइक करू, सब्सक्राइब करबे करू, सब दिन एतेक छोट मीठ बातचीत अहाँ सबके संग में करैत चलै छी एकटा अपन मनपसंद गीत दिस आइयो जायब।

0: दीवाना दिल तेरा दीवाना मैं तो तुझ पे मरती हूँ। श्रोता मित्र, बड़ सुंदर गीत छल अमर सबके पसंद में। उम्मीद है इस भोरक FM 92.8 मेगा हर्ज के तरंग पर गुंज रहा कार्यक्रम हेलो भोरकवा, जतेक श्रोता मित्र सब सुन रहा शायद संपूर्ण साथी सबके निक लागल हेतन हमर सबके पसंदक गीत। एहने सुंदर मिठकर गीत संगीत ल कऽ पहिल साथी फोन लाइन में आबि गेल छथि, के छथि, कतऽ सँ स्वागत करी? हेलो, नमस्ते।
1: नमस्ते सीमा
0: जी। शिवराम जी, की हाल चाल अछि?
1: बहुत ही दिल बहुत बढ़िया फोन सब।
0: बड़ सुंदर अछि हमरो सबके, की कऽ रहल छिए?
1: एखन अहाँ कार्यक्रम सुनै छी, फोन केलै, फोन केलै कि फोन लेलै।
0: आइ कोन गीत सुनब शिवराम जी?
1: आ सुना दिन दीवाने दिल को जान दूजा काम नहीं।
0: दीवाने दिल को दूजा काम नहीं, साथी संगी सबको सुनबे ला चाहब?
1: प्रथम सीमा दी के अनि अमित बाजी नमस्ते कर दिया।
0: अमितो जी नमस्ते कर रहल छथि, धन्यवाद अछि।
1: जी जी, अनि साथी सब मके जे भोलान कर दी दिनेश बाजे अनि बहुत गाछ सब मत अनि सुगो तो अनि सुगो जी सो अदम के आज दिन का साथ में सलमानन के जी से जी राजी दास जी जी के साथ अभी लगा रामनाथ जी में मंदिर गिरी लगा जते अखन और नया पुराना साथी सुनिए सब लगी की होगा।
0: जी, फोन केलहुँ, धन्यवाद अछि। फेर फोन करैत रहब श्रोता मित्र छलथि शिवराम जी, बड़ सुंदर छोट मीठ बातचीत केलथि आ बड़ सुंदर गीत पसंद केलथि दीवानी दिल को दूजा काम नहीं। हिनका चिन्हवला नहि चिन्हवला सम्पूर्ण साथी सबके लेल एहने सुन्दर मिठकर गीत संगीत के फरमाइश अहूँ सब कह सकै छी। श्रोता मित्र, चलब एखन गीत दिस।

0: हाँ, तेरी चाहत के सिवा मुझको दूजा काम नहीं। श्रोता मित्र, बड़ सुंदर गीत छल। शिवराम जी के फरमाइश में इनका चिन्ह वाला नहीं चिन्ह वाला संपूर्ण साथी सबके लिए पुनः आबि गेल छथि। एने सुंदर मिठकर गीत संगीत लऽ कऽ साथी फोन लाइन में के छथि, कतऽ सँ स्वागत करी। हेलो, नमस्ते।
1: हेलो, नमस्ते। नमस्ते
0: रामनाथ जी, की हाल चाल अछि?
1: बहुत बढ़िया, बहुत खुश। अपन अमित भाई जी के
0: बड़ सुंदर अछि। हमरो अमितो जी के की कह रहल छै रामनाथ जी?
1: दुकान में बैठे फोन वाले फोन लाले आप देखो सब होई छे।
0: आई कौन गीत सुनब?
1: पागे घुंगरू बांध मीरा नाची थी।
0: जी, पगे घुंगरू बांध मीरा नाची थी। साथी संगीत सबको सुनबे ला चाहब?
1: अहाँ के अमित भाई जी के
0: जी धन्यवाद अछि दुनू गोटे के दिस सँ।
1: अभी से रामपुर मुखिया जी, राजीव दास जी, श्रीराम मंडल जी, जूना भाई जी, छोटू जी, मंदिर जी, दिलीप ठाकुर जी, बरकतली जी,
0: जी फोन केलहुँ, धन्यवाद अछि। फेर फोन करैत रहब। श्रोता मित्र छलथि रामनाथ जी, बड़ सुंदर छोट मीठ बातचीत कलथि, बड़ सुंदर गीत पसंद कलथि। हिनका चिन्हवला नहि चिन्हवला संपूर्ण साथी सबके लेल

0: के पग घुंगरू बांध मीरा नाची थी। श्रोता मित्र बड़ सुंदर गीत छल राम नाची के फरमाइश में हिनका चिन्हवला नहीं चिन्हवला संपूर्ण साथी सबके लेल पुनः आबि गेल छथि एने सुंदर मिश्कर गीत संगीत ल के साथी फोन लाइन में के छथि कतौ सँ स्वागत करी। हेलो नमस्ते।
1: हेलो दीदी। नमस्ते दीदी
0: जी। रमेश जी
1: नहीं राजवाड़ी अपर गाजी छोटू जी।
0: छोटू जी की हाल चाल है?
1: बहुत नीक छै दीदी। अपन कहू आ टेक्निकल जी के कहू।
0: जी बड़ सुंदर है छै। हमरो अमितो जी के की कर रहल छियै
1: दीदी? अगर हम तो काम कर रहल छी सुरता बाजी लगा रहल छी दीदी की कहू
0: जी। आइ कोन गीत सुनब
1: दीदी? हमरा दिल वाले फिल्म सुना दियो। दिल वाले छै?
0: दिल वाले
1: जीता था जिसके लिए। जीत दिल वाले फिल्म गीत सुना दियो।
0: जीता था जिसके लिए साथी संगीत सबको सुनबे ला चाह।
1: सबसे पहले आ के टेक्निकल जी के राजीव दास या तो लड़के सभा बदल के एमडी साकिर जी या राज दास भोला जी बिजना जी गुरकुन जी सिमरा मंडल अखराज या बवालाल जी या रामपाल मुखिया या अहाँ के किने न किने सब पूछा दी है
0: जी। फोन केलहुँ धन्यवाद अछि। फेर फोन करैत रहब। श्रोता मित्र छल था छोटू जी बड़ सुंदर छोट मीठ बातचीत कल था बड़ सुंदर गीत पसंद कल था इनका चिन्ह वाला नहीं चिन्ह वाला संपूर्ण साथी सबके लिए।

0: जीता था जिसके लिए, जिसके लिए मरता था। श्रोता मित्र बड़ सुंदर गीत छल छोटू जी के फरमाइश में हिनका चिन्हवला नहीं चिन्हवला संपूर्ण साथी सबके लेल पुनः आबि गेल छथि एहने सुंदर मिटकट गीत संगीत लऽ कऽ। साथी फोन लाइन में के छथि कतऽ सँ स्वागत करी। हेलो नमस्ते।
1: नमस्कार
0: जी, अपने के शुभ नाम?
1: रामसी
0: जी, की हाल चाल अछि? बड़ सुंदर अछि। हमरो अमितो जी के की कह रहल छै रामसी जी? आइ कोन गीत सुनब? ऊपर वाला अपने साथ है, साथी संगीत सबको सुनबे ला चाहब? धन्यवाद इस दोनों गोटे के दिशा।

जी श्रोता मित्र, चल था रामसी जी बड़ सुंदर छोट मीठ बातचीत कल था, बड़ सुंदर गीत पसंद कल था। यार भी मिलेगा, दिलदार भी मिलेगा, इनका चिन्हवला नहीं चिन्हवला संपूर्ण साथी सबके लिए। एखन चल अब गीत दिस, गीत के बाद जाए एक छोट मीठ कमर्शियल ब्रेक। दिस ब्रेक के बाद पुनः हमारा सबके अपन कार्यक्रम हेलो भोरकवा में।

0: नीम करोली बाबा के जीवनी पर आधारित आ 175 करोड़ सँ बेसी के कारोबार विश्व भर में करो में सफल फिल्म हनुमान अंश शिव शंकर सिनेमा राज विराज में चल रहा है। फिल्म हनुमान अंश,
1: हिंदी फिल्म हनुमान अंश, सब परिवार आब देखू आ बाबा नीम करोली के जीवनी सँ प्रेरित हो फिल्म हनुमान अंश।
0: राज विराज में आप सब प्रत्येक दिन वरिष्ठ छाला यौन रोग तथा सौंदर्य विशेषज्ञ डॉक्टर रंजू पोखरेल MBBS MD डर्माटोलॉजिस्ट द्वारा जांच इलाज भ रहल है।
2: जो एहन कोनो समस्या अछि त निक आ प्रभावकारी इलाज के लेल अनुभवी डॉक्टर रंजू पोखरेल के क्लिनिक सरिता मेडिकल हॉल में संपर्क करू।
0: याद रखू, सरिता मेडिकल हॉल सरकारी अस्पताल के पश्चिम गेट में।
2: फोन नंबर 9808 1978।

0: सोनाक गहना बड़ा सुंदर या डिजाइनो नया कता बनेलिए?
1: ये काव्या ज्वेलर्स राज विराज में बनेलिए। आधुनिक डिजाइन का सोना चांदी का गर गहना ऑर्डर बमोजिम का गहना गारंटी के साथ बनबे आ नवग्रह का पत्थर सेहो भेटे छे।
2: काव्या ज्वेलर्स राज विराज साथ मेन रोड अदालत के पूर्व प्रोपराइटर सोनी कुमारी साह आ सुनील साह मोबाइल 98-97-40-445।
3: भौजी बहुत टेंशन में छे की भगेल
0: की हेते देखू ना केन बॉक्स पलंग खरीद के आनलक है जे नोट कसते कसते सब टूट गेल।
3: सुनू जय श्री हनुमान ट्रेडर्स में बहुत मजबूत बॉक्स पलंग भेटे छे खरीद के आन लिया आ वही ठाम सब सामान भेटे छे।
0: ओतो की सब तैयार करे छे यो?
3: बॉक्स पलंग 3 पीस आ 2 पीस दराज सोफा सेट डाइनिंग टेबल कुर्सी अलना ड्रेसिंग टेबल बाघ पंजा सोफा सेट।
1: जी हाँ शादी विवाह आ ऑफिस के लेल संपूर्ण सामान आधुनिक मशीन से कंप्यूटर के डिजाइन अनुसार फर्नीचर तैयार कैल जाए छे।
3: 5x6 फीट के फुल बुटा के बॉक्स पलंग शादी सेट 35,000 आ 6x7 फीट के शादी सेट बॉक्स पलंग 45,000 में भ जाए। संगे मॉडल किचन खरात कार्विन के व्यवस्था छे। पलाई फर्मेका रेडीमेड ढोका हैंडल हत्था कांटी कब्जा स्प्रिट चपरा आ शीशा लगात फर्नीचर के संपूर्ण सामान उपलब्ध।
1: प्रोपराइटर शंभु सुथियार
3: जय श्री हनुमान ट्रेडर्स राजविराज 1 कंचनपुर रोड नहर चौक चूड़ा मिल के बगल में।
1: मोबाइल
3: 98-047-040-70 आ 98-628-66-270।

0: extreme energy drink.
1: This program is brought to you by Berger Rang Bahar.
2: Upahare Upahar.
1: Lucky Draw Bumper Ma Yamaha Razor. Berger Pens.
3: এখন আপনি সব শুন রহল ছি ভোরকবা এফএম 92.8 মেগাহার্জ। जी श्रोता मित्र, स्वागत है इसी शॉर्ट मीट कमर्शियल ब्रेक के बाद पुनः सबके अपन कार्यक्रम हेलो भोरकवा में। श्रोता मित्र, कार्यक्रम अहा सब सुन सके छी प्रत्येक रवि दिन से लौकर शुक्र दिन धरि साँझ के 5 बजे लौकर 6 बजे तक एक घंटा धरि रहे छी अहा सबके संग में। आई कार्यक्रम के मार्फत से अहा सब सुन सके छी अपन मन पसंद गीत संगीत साथी संगीत सबके याद कह सके छी। डायल करब अपन सबके स्टूडियो के नंबर 0031531717। एखन आबि गेल छथि साथी फोन लाइन में, किछु आज कतऽ सँ स्वागत करी। हेलो नमस्ते।
4: नमस्ते। नमस्कार श्रीमान जी।
3: जी शंकर जी।
4: जी जी जी जी,
3: की हाल चाल शंकर जी?
4: बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। अहाँ अपन सुनो।
3: बड़ सुंदर है। हमरो सबके की कह रहल छे?
4: अहीं के प्रोग्राम सुनै छी।
3: आइ कोन गीत सुनब?
4: एकदम पूरे पूरे हैरान भ गेलौ।
3: कहियो काल भ जाइ छै शंकर जी, आइ कोन गीत सुनब?
4: हमरा ई सुना दे, बरेली के बाजार में झुमका गिरा रे।
3: साथी संगी सबके सुनबे ला चाहब?
4: बस बना दोनों आदमी का
3: जी। धन्यवाद है दोनों गोटे के दिशा।
4: ओकर बाद जैसे से अपने के मंदिर गिरी भोला सा, ओकर राजेंद्र मंडल बिना पटली जमा राणा जी, ओकर बाद राजेंद्र यादव जी, मेह ठाकुर, रमेश ठाकुर और छोटकू शौकत अली, रहमत अली, बरकत अली, छोटू जी, ओकर बाद सीधा से अपन के बरकत जी, ओकर बाद जैसे कोलाई से वैद्यनाथ मंडल, ओकर सागर बुल्लू चंद्रमा, ओकर अपने के एफएम जे सुन रहे गुरु को सब ग्रह हमर बात कर
3: जी। फोन के लाऊं धन्यवाद है। फिर फोन करत रहब। श्रोता मित्र चलत है शंकर जी, बड़ सुंदर छोट मीठ बातचीत कल था आ बड़ सुंदर गीत पसंद कल था झुमका गिरा रे। हिनका चिन्ह वाला नहीं चिन्ह वाला संपूर्ण साथी सबके लेल
5: झुमका गिरा रे।

0: झुमका गिरारे बरेली के बाजार में श्रोता मित्र बड़ सुंदर गीत छल शंकर जी के फरमाइश में इनका चिन्हवला नहीं चिन्हवला संपूर्ण साथी सब के लेल पुनः आबि गेल छथि एने सुंदर मिठकर गीत संगीत लऽ के साथी फोन लाइन में के छथि कतऽ सँ स्वागत करी हेलो नमस्ते
1: हेलो
0: जी नमस्ते अपने के शुभ नाम
1: दीदी नमस्कार
0: जी अपने के शुभ नाम
1: धनेश्वर छोटू
0: धनेश्वर जी की हाल चाल है
1: ठीक है दीदी अपन केना हाल खबर दीदी
0: बड़ सुंदर है हमरो सब के की करे छी अपने घनेश्वर जी
1: दीदी एक गीत सुना दिया
0: हां
1: एटा की सुना दिया थी
0: जी जी
1: दिलवाले दुल्हनिया का
0: जी कौन गीत सुनब दिलवाले दुल्हनिया सा
1: दीदी हमरा याद नहीं या मुंह में याद हम कह देलो
0: जी साथी संगी सबको सुनवेला चाहब
1: हां दीदी मंजे गिरी सर याद आदि शौकत अली बरकत अली राजीव दास महेश ठाकुर विशेषर यादव खेरीलाल यादव क्या गेल दीदी चिन्हे नहीं चिन्हे सब नमस्कार
0: धनेश्वर जी
1: हाँ जी दीदी
0: आज पहिल दिन फोन केलो अपने
1: नहीं दीदी क्या दिन करने
0: जी जी जी फोन केलो धन्यवाद एच फिर फोन करत रहब श्रोता मित्र छलत है घनेश्वर जी बड़ सुंदर छोट मीठ बातचीत कलत है बड़ सुंदर गीत पसंद कलत है दिलवाले दुल्हनिया सब कोनो गीत कलत है बजा दिला हिनका चिन्ह वाला नहीं चिन्ह वाला संपूर्ण साथी सब के लेल एहने सुंदर मिठकर गीत संगीत की फरमाइश अहू सब कह सके छी मात्र भोरकवा FM 92.8 मेगाहर्ट्ज के तरंग पर गुंज रहल कार्यक्रम हेलो भोरकवा के मार्फत सब

0: हाँ श्रोता मित्र सुन लो, खंड बड़ सुंदर गीत छल हो गया है तुझको तो प्यार सजना। श्रोता मित्र घनेश्वर जी के फरमाइश में हमर सब के पसंद के गीत छल उम्मीद है घनेश्वर जी के निक लागल है। इनका चिन्ह वाला नहीं चिन्ह वाला संपूर्ण साथी सब के लिए छल पुनः आबि गेल छथिन सुंदर मिठकर गीत संगीत लौ के साथी फोन लाइन में की छथि कतो सर स्वागत करी। हेलो नमस्ते।
1: हेलो नमस्ते। नमस्कार
0: जी, अपने के शुभ नाम?
1: बैद्यनाथ मंडल।
0: बैद्यनाथ जी की हाल चाल है?
1: सब ठीक है
0: जी, बड़ सुंदर है। बैद्यनाथ जी की करे छे अपने?
1: किराने दुकान छे
0: जी। आई कौन गीत सुनब?
1: दिल ने तेरा नाम लिया हर सांस में।
0: साथी संगी सबको सुन मिला चाहब
1: जी? हाँ दोनों गोटे को
0: धन्यवाद है दोनों गोटे के दिस सब
1: छोटी ठाकुर के बला पर साथी जमरा नाथी बुंदेश्वर बाबा राजीव का आदि शंकर भाई ब्राह्मण पिताय काम पर मुखिया दिलीप कुमार का मनोज कुमार ठाकुर रमेश कुमार ठाकुर और हमारा नाम सुनने वाला नहीं सुनने वाला सर
0: जी फोन के लो धन्यवाद है। फिर फोन करते रह श्रोता मित्र चलता है बैद्यनाथ जी बड़ सुंदर छोट मीठ बातचीत कल था बड़ सुंदर गीत पसंद कल था दिल ने तेरा नाम लिया। इनका चिन्ह वाला नहीं चिन्ह वाला संपूर्ण साथी सबके लिए श्रोता मित्र चल अब किछ कमेंट दिस लिखने छाये ध्रुव यादव जी। हेलो सीमा दीदी, गुड इवनिंग, हाउ आर यू सिस्टर फ्रॉम मलेशिया से सुन रहा छी के लिखने छाये जी। कुमार सत्या जी लिखने छाये हाय हम मधुबनी जिला के मधुबनी जिला से सुन रहा छी गाना मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया सुना दिया कहके लिखने छथि। दीपेंद्र कुमार जी लिखने छथि सौ प्रेम नमस्कार हम गांव गोइत परसाही थाना खुटौना जिला मधुबनी बिहार से लिखने छथि प्रस्तुति बहुत नीक लागल कहके। तेना दिनेश टेंट हाउस टीचे धमाका से लिखने छथि त्रिवेणीगंज सुपौल बिहार से सीमा जी आज का प्रोग्राम हिट कहके लिखने छथि। तेना मुकेश यादव सुनील जी लिखने छथि हेलो हाय शुभ संध्या सीमा दीदी सुपर हिट प्रोग्राम हम सुनील कुमार यादव एवं मिंटू यादव कुफा गणपतगंज सुपौल बिहार से। तहना लिखने छथि भुवनेश्वर मंडल सी हाय हेलो दीदी नमस्कार हम मलेशिया में कार्यक्रम सुनै छी जय नेपाल मधेश जय मधेश गीत के बोल राम तेरी गंगा मैली हो गई पापियों के पाप धोते धोते। अविनाश कुमार भारती जी लिखने छथि हाय हेलो नमस्ते दीदी हम डंगमारा सुपौल जिला बिहार से लाइव जुड़ल छी हम सब दिन प्रोग्राम सुनै छी हमरा बहुत सुंदर लागैए हमरा एगो कुमार सानू के आवाज में गाना सुना दिया कहके लिखने छथि। जीवछ मोबाइल जी से लिखने छथि

नमस्कार दिदी, हम जीवज कुमार, जीवज मोबाइल रिपेयरिंग सेंटर जी बनारसी चौक फुलकाही फुलपरास से लिखने चाहे तना शिवशंकर मंडल जी लिखने चाहे नमस्ते सीमा जी, अहाँ के प्रोग्राम गुजरात में सुने छी, धन्यवाद कहकर तेरा लिखने चाहे सद्दाम जी। नमस्ते दीदी, हम रसिया से अहाँ के प्रोग्राम सुने छी, बड़ा मजा आबैया कहकर लिखने चाहे जी। सुनिक अपन भाषा अपन गीत सुनिक हम जी रहै वाला सुपौल जी हुसैन चौक के छी कहकर लिखने छथि। तेना लिखने छथि शम्भु जी, नमस्ते दीदी कहकर लिखने छथि। बड़ सुंदर अछि श्रोता मित्र अहाँ सबके कमेंट, एहने सुंदर सुंदर मिटकर मिटकर कमेंट कऽ कऽ सबदिन साथ दैत रहब। आइ एक घंटा धरि साथ देलहुँ ताहिके लेल बहुत रास धन्यवाद अछि। आगू दिन महीना कमेंट कऽ कऽ साथ दैत रहब। उम्मीद करै छी साथी सब जे आइ एक घंटा धरि फोन कऽ कऽ सहयोग केलथि हैं हुनको सबके सम्पूर्ण साथी सबके धन्यवाद छनि। नाम सेहो लै लए चाहब, छलथि शिवराम जी, रामनाथ जी, छोटू जी, रामाशीष जी, शंकर जी, धनेश्वर जी, तेना वैद्यनाथ जी, सम्पूर्ण साथी सबके धन्यवाद छनि। जे साथी सब फोन लगेने हेता कोनो कारणवश फोन नहि लागल हेतनि हुनका सबके कहै लए चाहब जे अहाँ सब सोम दिन ट्राई करब, स्योर लगबे करतै। बात कहता जे टेक्निकली रूपसँ एक घंटा धरि साथ देलथि अमित जी, हुनको धन्यवाद दैत। अंत में वैद्यनाथ जी के फरमाइश के गीत छोड़ता है कि कार्यक्रम से हम सीमा विदा है छी। नमस्कार, शुभ संध्या, सुनत रह भोरकवा FM 92.8 MHz।

0: नीम करोली बाबा के जीवनी पर आधारित आ 175 करोड़ सँ बेसी के कारोबार विश्व भर में करो में सफल फिल्म हनुमान अंश शिव शंकर सिनेमा राज विराज में चल रहा है। फिल्म हनुमान अंश
1: हिंदी फिल्म हनुमान अंश सब परिवार आब देखू आ बाबा नीम करोली के जीवनी सँ प्रेरित हो फिल्म हनुमान अंश।

0: Mania.
1: Extreme energy drink.
2: ये सुनो
3: की कहे छे
2: हम जाय छी तिरुपति ट्रेडर्स में वही ठाम सीजन अनुसार के सब डिविजन भेटे छे खरीद लेबे आ चलि एबे
3: एकटा रोटावेटर के ऑर्डर सेहो दे देबे
2: हेते
4: तिरुपति ट्रेडर्स राज विराज
5: जी हाँ एहिठाम विभिन्न प्रकारक औद्योगिक मशीन उचित दाम में उपलब्ध है
4: चप्पल बनाबे वाला मशीन
5: मुर्गा दाना बनाबे वाला मशीन आ माछ उत्पादन के लेल कृषि औजार सामान सब
3: पावर ट्रेलर
5: थ्रेसर
3: रोटावेटर
5: कम्पाइंड धान आ गहूँ काटे वाला मशीन
3: रोपे वाला मशीन
5: स्प्रे मिल सेट जेनरेटर
3: कृषि औजार स्पेयर पार्ट्स
5: आ बोरिंग सामान संगे घर निर्माण आ हार्डवेयर संबंधी संपूर्ण सामान उपलब्ध है
4: तिरुपति ट्रेडर्स एंड सप्लायर्स कंचनपुर रोड राजविराज 8
5: प्रोप्राइटर अशोक कुमार यादव
4: मोबाइल
5: 9807788897 आ 9847552178
6: अपांगता भेल व्यक्ति बाल बालिका ज्येष्ठ नागरिक आ बिरामी के विशेष ध्यान देबाक चाही
7: आइ काल्हि अत्यधिक गर्मी आ गरम हवा चलो वाला समय अछि ताई एहन अवस्था में जर एनाय उल्टी जका लगनाय थकान लगनाय बेसी प्यास लगनाय धड़कन बढ़नाय श्वास प्रश्वास में समस्या भेनाय अत्यधिक माथ दुखेनाय बेहोश भेनाय मांसपेशी सब दुखेनाय उल्टी भेनाय जेहन समस्या सब देखल जा सकत अछि
6: गरम हवा के प्रभाव तथा लू लागे से बचे वाला उपाय सब
7: जूस शरबत आदि प्रशस्त मात्रा में पियल जाओ
6: दिन भर प्रशस्त पानी आ झोर वाला चीज सब सेवन कैल जाए
7: हल्का ढीला आ सूती के कपड़ा सब लगावल जाए
6: संभवतः ठंडा स्थान में बैसल जाए
7: दोपहर के समय में अनावश्यक घर से बाहर नहीं जाओ
6: बाहर जाइए परत छाता टोपी चश्मा आ पंजा प्रयोग कैल जाए
7: खाली पेट बाहर नहीं जाओ
6: दोपहर के समय में कड़ा शारीरिक परिश्रम नहीं कैल जाए
7: स्वास्थ्य संबंधी कोनो प्रकार के समस्या देखल जाए तब स्वास्थ्य कर्मी संग नियमित संपर्क में रह अनुरोध कैल जाए
8: सबल नेपाल आ समावेशी अपांग संग सप्तरीक साझेदारी तथा CBM ग्लोबल के सहयोग में संचालित अपांगता समावेशी विपद जोखिम न्यूनीकरण परियोजना द्वारा जनहित में जारी संदेश
9: अपने सब सुन रहे 92.8 मेगाहर्ट्ज़ पर

0: छे, चलू ना ओते जांच करा दे छी।
1: अब अपने भवन राजविराज में गजेंद्र नारायण सिंह सर माथांचल अस्पताल में कार्यरत प्रसूति तथा स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दिलीप कुमार शाह टीचिंग अस्पताल काठमांडू MD
0: प्रसूति आ स्त्री रोग संबंधी संपूर्ण जांच आ इलाज करैत अछि।
1: सेवा आ सुविधा सब
0: बच्चादानी खसनाई के ऑपरेशन सेवा, गर्भवती महिला जांच, स्त्री रोग, लिकोरिया, महिनावारी गड़बड़ी, पीठ आ डाँड दुखेनाई, पेशाब जलन, मांस बढ़नाई, निसंतान दंपति के परीक्षण, IUI सेवा, वीडियो एक्सरे,
1: आधुनिक लैब के संगे फार्मेसी सेवा उपलब्ध है।
0: अवश्य सेवा के मौका देल जाए।
1: प्रसूति तथा स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दिलीप कुमार शाह राजविराज हनुमान नगर रोड साबिक जन स्वास्थ्य ऑफिस से पूरब छिन्नमस्ता अस्पताल के सामने दक्षिण साइड।
0: मोबाइल
1: 9816779585 आ 9817189133।
0: स्वास्थ्य कार्यालय सप्तरी का जरूरी सूचना।
2: सप्तरी जिला भीतर नगर पालिका आ गांव पालिका में जापानीज इंसेफ्लाइटिस मस्तिष्क के जर बुखार मच्छर काटला से भरल छे। ई रोग संक्रमित मच्छर के कटला से पटे छे। ई रोग कोनो भी उमेर समूह के व्यक्ति में लाग सके छे।
0: 15 बरिस से कम उमेर रहल बाल बालिका में रोग देखल जाय छे।
2: ई रोग हांस मुर्गी पंछी सुगर बंगुर से मच्छर में आ आदमी में रोग लागे छे।
0: ई रोग के प्रकोप खास करके सौन महीना से कार्तिक महीना धर रहे छे। ई रोग के लक्षण सब
2: कोनो भी व्यक्ति के उच्च बुखार लगनाय, मथा दुखेनाय, बेहोश होनाय, कंठ कड़ा भेनाय, शरीर कपनाय, एहन रोग देखला पर तुरंत नजदीक रहल स्वास्थ्य संस्था में संपर्क करू। समय पर इलाज नहीं कैल गेल त बिरामी के मृत्यु भ सके छे।
0: ई रोग से बचबाक उपाय सब
2: मच्छर कटनाय से बचू। घर से बाहर गेला पर वा खेत बारी में काम करे बखत समूचा शरीर झांपल कपड़ा पहिरू।
0: सब दिन झूल भीतर सुतू। हांस मुर्गी सुगर बंगुर घोड़ा जेहन घर पलुआ जानवर आ पंछी के घर से दूर व्यवस्थित रूप से पालन करू। घर के झाल ढोका में जाली लगाबू।
2: घर के अगल बगल सफा राखू। अनावश्यक झाड़ पात सफा करू आ पानी के झाप कर राखू। पानी जमल जगह के माटि से भरू।
0: ई रोग से बचबाक लेल 12 महीना के उमेर में जे ई विरोध खोप अनिवार्य लगाबू।
2: यदि समुदाय में कोनो बाल बालिका के खोप छूटल हो त 5 वर्ष के उमेर में सेहो लगा सके छी। विशेष जानकारी के लेल स्वास्थ्य संस्था में संपर्क करू।
0: अनुरोध करता
2: स्वास्थ्य कार्यालय सप्तरी।
3: आह कतेक दर्द करे छे, ठेहुन भीने आ नस फूल जाय छे।
4: की भ गेला से?
3: ओ बुआ नस फूल गेले आ ठेहुन के जोड़ से दर्द करे छे।
5: आप चिंता नहीं कर, चलो मंडल जी के क्लिनिक राजविराज में
4: डॉक्टर रिधिनाथ प्रसाद मंडल से जांच करा दे छियो।
6: रो आ हमारे डाल का नस बड़ दुखाई या बारे ठीक भाजते ना?
4: पूरे ठीक भाजते।
1: जी हाँ, हार जोड़नी तथा नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रिधिनाथ प्रसाद मंडल MBBS MS
7: हर प्रकारक टूटल हड्डी जोड़नाय, प्लास्टर ऑपरेशन आ नस रोग संबंधी जांच आ इलाज करैत अछि। संपर्क कैल जाए।
1: हार जोड़नी तथा नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रिधिनाथ प्रसाद मंडल नर्मदा अर्थो केयर सेंटर राजविराज नेता चौक दक्षिण हीरा फार्मेसी।
7: मोबाइल 9847996749 आ 9817930096।
8: ओ मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे दई।
9: नीम करोली बाबा के जीवनी पर आधारित आ 175 करोड़ से बेसी के कारोबार विश्व भर में करो में सफल फिल्म हनुमान अंश शिव शंकर सिनेमा राजविराज में चल रहा है। फिल्म हनुमान अंश
10: हिंदी फिल्म हनुमान अंश सब परिवार आब देखू आ बाबा नीम करोली के जीवनी से प्रेरित हो। फिल्म हनुमान अंश

0: जेतै, कोनो मेजमानी एतै ना, कोइ गोर लागतै तऽ टको नहि देतै।
1: आगो बाबू सो 2100 टका पचबै खातिर ई कते हमरा भैया के दे डाहै छै, एकरा केना के मुँह में बाजे में नीक लागे छै, कोन मुँह ले के बाजे छै, केना के बाजल जाय छै, एको रति विचारो नहि छै मुँह बाजैत।
0: न दे एकटा गप कहू तऽ,
1: हमर भैया के केना के दे डाहै छै एहन नीक भैया के?
0: ए अहाँके भैया के हम दे डाहै छियै? आब हमर माय के जे कहलकै खतुरनी, ओ बड़ नीक भेला।
1: नौकरी करे लो अहाँके माय बाप बड़ धनी
0: धनी नहीं छे तो ना आए के बाद हम अहाँ संगे कतो जाय वाला नहीं छी।
1: नहीं जाओ ना, अहाँके ले के जाइए, यहाँ लोग से कथी लोग ले जतै, गाड़ी घोड़ा कोनो कनिये चले छै, भाड़ा तिरवा चल जाए स्टैंडर से।
0: हाँ स्टैंडर से चल जाब ना, वह कारण से अब हम जेबे न करबे।
1: नहीं जाओ ना, नहीं जाओ ना, नहीं जाओ ना।
0: कमेलिए हम आ पिसी खेते एकर भैया।
1: हे मुँह संभाल के बाजू, से कह दे 2100 टका का केना के एके छड़ में खा लेलिए, कते टका पेट यहाँ का? अखनी बाबू नहीं छे ना, तै दुआरे अहाँ के सब बात पूछे छी।
0: आ सुनो ना, केना के खेलिए? जाबत तक रहलिए ना परदेश में, अहाँ तो चल एलिए, तै के बाद में टर टर झोर दे माछ के एकटा दूटा टुकड़ी दे, न पेटे भरे न मने आगावे।
1: आगो बाबू सब, गो बाबू सब, तब दुनिया में लोग कहे छे की जे माल जाल के पोसी तो फोन कटावे छे, लोग के पोसी तो फोन दियावे छे, अकरा जे छे से आधा आधा किलो के माछ दे मौस दे खाय ल, आ से केना के नित गुनिया के करति गुण रहो मन म, एक एक थारी के भात खा ले चार दाय परसल लेत रहे, और दिए कनी ओ माछ दिए, कनी ओ माछ दिए, आ केना के एहन बात बाजे छे गो बाबू सब, एको रती ने विचार है छे मन म?
0: ओ त अहाँ के सामने में फर्स्ट दिना ने दोसर दिना देलके न, अहाँ जे चल एलिए तकर बाद में त शुरू भए गेलै बेचिया भात के पल्लव, तकर बाद में ओ की कहै छै से आ माछ, मतलब जे छै न ओ ओहिठिना दू किस्म के माछ मछली है बुझलिए से।
1: केना के दू किस्म के? एक लोहिया में केना के बनबैत रहे दू किस्म के?
0: एक बेर की करे टर टर झोर दे दे जय आदमी छे मुड़िए पीछू माछ, मुड़िए पीछू मौस, एकटा के बुट्टी ओ अलग निकाले, आ स्पेशल जे ओ सब खाए तो वो सब निचो खाए, तो तेना करके अंतिम
1: केना कहे मुझौसा अहाँ केना के बुझ गेले जी स्पेशल छे अथी छे टट्टर झोर छे?
0: जिंदगी भर माछे मार के खेलिए मौसे खेलिए तो हम नहीं बुझबा, सब कोई खा ले तो अंतिम सुतल रहिए तब के मेजबान चल न खेल
1: तो सुत रहे छे तो केना के उठा, तहाँ धिया पुता छे मोर मेजबान के काम छे बैठल रहते खाना बनते बोलेते चाप के खा लेते तब निठास खर्रत रहिए नींद तो की करते वह लोग कथी लग जगेते सब खा ले उड़ल पुरल खिया दे हाथ।
0: ए कथी हम बोगला छे यार?
1: क्या न गेलो बोगला छे की कौवा छे की कथी छे से तो ही जानबे,
0: बैठल रहबे पोखर के तो जना बोगला एकदम ध्यान देने रहे छे कखनी माछ ऊपर में एते जर लोल मारबे से बुझ लेलिए हमरा।
1: वैसे की कम छे, वैसे एको टका ने कम छे, ऐसे बढ़िया था बोगले भए जाती है तो बहुत नीक हेती है, हमरो कपार में तो नीक रहती है।
0: हाँ देखलो देखलो अहाँ के भैया खाते रहे, अहाँ के घर में चले रहे उजरा वो कथी कहे डॉगी डॉगी मुँह ताकत रहे क्या बुझ लेलिए हमरा?
1: हे भगवान, एकरा नहीं ले जाय वाला छे गो बाबू सो, अखनी तो भाग से बुढ़बा बुढ़िया नहीं छे अंगना में, नहीं तो ई सब कहानी सुन लेती है तब हमरा तो और उलहन देती है दिन देखारे।
0: अच्छा ले सठ लिया साहब?
1: नहीं नहीं सठ ले, हमरा 2000 टका चाहिए।
0: सुन हमरा खाय ला दे दियो ना, हम आन दे छी
1: खाय ल। केहन बात करे छे, यहाँ के केना के खाय ला दे? पहले तो हमरा गोट गोट के हिसाब पुख दे तब खाय ला दे की?
0: अच्छा एकटा गप कहू तऽ,
1: कथी
0: जमा 2100 टका देलकै गोर लगाए बेरी झाड़ के, तो ओहिमे 100 टका छोड़िए दियो मान लिया हिसाब में पैसा पैसा कतऽ से हेतै, 20% कमीशन कतेक भेलै 20 दुना 40, 400 टका भेलै
1: भेलै, लेकिन हमरा भैया के देह नहीं

0: उसे फिर कहती फिर
1: फोन लगेबम
0: लगाबे तो फोन हिम्मत ये तो लगाबू तो फोन
1: पहले हिसाब ला लिया
0: हाँ कहू
1: 20 × 40 नहीं पढ़ल तैयो की ठकवा पढ़ले न ओते हिसाब कर ले जा हमारा कौन बात 20 × 40 = 400 बच गए 1400
0: आगो बाबू सब कते चमचमोडा में खाना पीना छे बोलियो करती फूटे छे बोली केना लटपटाय छे
1: ए बोली लटपटाय छे ठीक है तो कह लिए 2000 में 400 घट गए 1400 भले न
0: हाँ
1: अच्छा तो एक बाद में उठना था वो चौक के लिए चिट्ठी रिक्शा पर 200 ऊ ला लेलकी
0: सिटी वाला 200 ला लेलो कहाँ कोनो विदेश का लग रही है कहलिए नहीं
1: अढ़ाई टा मोटा रही खीर पूरी वाला आटा वाला वो पूरी रहती तब ना पूरियो डाल देती चिट्ठी वाला का रहे तो वही आटा डाल हम चौक
0: ये को बेर जब बाज लिए ना आटा आटा या मुंह से बुढ़िया जब बुझ गए तब अहाँ बुझे जो खाए ला देव थारी में वो थारी का घींच ले रसे रसे
1: एक बात कहलू तो 200 ऊ ला लेल तो बेच गए 1400 1400 में 300 ला लेल के अहाँ बस बच गए 1100 में तब एलिए तब फिर गलिए ओत चमचमाटा में पहलुका उधारी रही 500 500 ओकरा दे दिलिये चमचम अड्डा वाला के बच गए 600 वही 600 में तारा मतलब 6 प्रकार के खेलिए पैसा चल गए वही में हिसाब ले लिए यार भेल भेटल टका
0: हाँ भेट गए टक्का भेट गए केना के 600 से गड़े पेट में खा लिया 600 के माछ में सनती है तो घर में माँ खाती है बाबू खाती है सटा बाल बच्चा खाती है हमू खाती है सब परिवार मिल के खाती है ना है असगरे केना के खा लिये केना के अट गया अहाँ के पेट में पेट से की बखारी छी
1: देरी वाला के वही डगर से कटल छे तोल के पचपरिया भाग में वहीठना से हम मोटा बोक लिए कपार पर ओते दूर लिए हसियाल फसियाल लिए तब जते खेना रही प्रदेश में हम ओने भर छोड़ दिलिये अपना टोल जाइए लिए न तो खाली भाग ले तब जाकर माय के खोजे बहाना में चल गई चमचम अड्डा जते जहाँ चले दुकानदार को छब खा लेलिए पैसे घट गए ना तो और हम खेतिए
0: तो चल जाओ ना चल जाओ पैसा दी हम चल जाओ
1: एना करू ना
0: केना
1: दूटा पूरी दा दिए ना हम चल जाए पैसा दे दिए 100
0: देखो दूटा पूरी दे देखो तो देवे न करो पूरी आ 200 देवा दूटा पूरी देवे देखो मुँह के निक लगे छे
1: ए हम ही आन लिए परदेश से छनेस हम ले न देवा
0: हाँ सनेस कहू आटा का जो नाम लेवे ना तब बुझे यहाँ केना है छे
1: आटा आटे के ना पूरी बने छे ओइतना नै दल के पका के तो आटे नै इतना
0: बन लिया बाबू सब का बाबू सब कहै छे एकरा ये आटा न का नाम नै लियो बुढ़िया बुढ़वा सुन जते बुढ़वा बुढ़िया का कान कते खोर छे
1: आटा के नाम के ना लेबे तो कथी मै माइट का पूरी बनबै छा
0: एगो बाबू सब नहीं दब नहीं दब कान पकड़ के उठू बैठू थूक चाटू जाए दिन से हम चमचम अड्डा नहीं देवे नहीं जेबे तब तो देव खाए लो नहीं तो खेना यहाँ का बंद
1: वाला कौन प्रसाद में पड़ गए हम कान गए हम जुलूम ये एक सब कह
0: कथी ये
1: तखनी से कहलिए हिसाब लो हिसाब दिलू की खेलिए की सब खेलिए से सब कहू तो सेहो कह दिलू कमीशन वाला बात चले सेहो कह दिलू सब चीज पूछ ले लिया तैयो कह खाए ला नहीं भेटत ई कौन बात भले हमरा से कहू तो
0: अहाँ के की कहना छी कान पकड़ के उठू दोस्त देव बैठू तकर बाद हम डिसीजन लेबे जे खाए ला देव की नहीं देव
1: एक और दिन दया ममता नहीं लाए हमारा सुनक लोग के कहे कान पकड़ के उठू बटू आ कल के ना तो गप चल जते सौंसे टोल तब के मन लागत अहाँ
0: ककरा जब अहाँ के कहाँ कहेलो हमरा नैहरा के गप के पतियात सब अहाँ के बुझना या जहाँ केहन छे से
1: नैहरा के गप नहीं कहलू अहाँ कहे हमरा कान पकड़ के उठक बैठक करू
0: हाँ तो ठीक है तो कहे छी अखनी अंगना में छी के देखे लावे छै
1: हाँ तो हम ठीक है कहे छी अखनी खाएल नहीं देवे ना तो खाए ला तो हम कदम उठना जाके खाइए लेवे ठकवे ल चाहे अगर फरेबिये बवाल चल जाए
0: जाओ ना मुहे नोच ला धीपले देख सटले रह दे छे खाए ल
1: लेकिन लेकिन
0: कथी लेकिन लेकिन करे छी
1: पूरी नहि देलकै आटे छानि के दे देलकै।
0: कोइ न विश्वास करत, अहाँ जाउ न, हमरा धमकी नहि दियो। धमकी देना से हम डरे वाली नहि छिए। जे कहलू से करू, थूक राखू, चाटू, कान पकड़ के उठू बैठू।
1: हम नहि करू।
0: नहि करबै तऽ नहि देब खाय ल।
1: ठीके छै, तऽ हम अहिना बीच अंगने मे सुत रहै छी।
0: बीच अंगना मे सुतू की बीच द्वार पर सुतू की डेढ़िया पर सुतू की जागले रहू, से हमरा कोइ मतलब नहि छै।
1: ठीके
0: छै, कोनो बुढ़बा बुढ़िया छै अंगना मे, भन नहि छै।
1: आओर बनै हेतै तऽ देखतै न।
0: खूब देखतै की हे भगवान, कत्ते से अयलै चमचम अडा से खा कऽ। देखी तुरते केना खर लगले, मन दे छै मरचाइये बुकनी नाक लग धा दी। एके बेर मे सुरकि लेतै सबटा। कपार नहि तन केना के हमरा कपार मे बथायल रहे, केहन के सुर रहै छै। ई तऽ खा के अयलै ओते चीज, 600 टका 700 टका खा के लगला, थोड़ी भूख लगल रहतै। ई झगड़ा के खोज करै छै। एना एना करबै तऽ झगड़ा लड़ाई घर मे हेतै, विवाद हेतै, और हमरा मौका के फायदा उठेबै। देखी केना खर रहै छै। यो बुढ़बा बुढ़िया कतौ चलि गेल अंगना से, एतिये तऽ ने देखतियै जे हमर बेटा कते नीक छै। बाकी मच्छर कते काटने छै गाल पर, मारियो दै छियै कनी, नहि तऽ कहतै की सबटा खून पी लेतै। देखो बाबू सब, भरि हाथ खून लागि गेलै, कते मच्छर लटकल छै, केना के हम एतऽ झूल टांगबै। हे भगवान, केना के देखल जेतै, मन तऽ छोड़ दी, नहि हम देखबै, नहि हमरा टेंशन हेतै, चलि जाइ छियै हम घर मे, खा लेबै लए कऽ भरि पेट, आ घर लगा कऽ सुति रहबै। भना एतै एकर माय बाप तऽ देखतै, भना भना मच्छर घिसी एतै खूब कऽ। अब एके बेर जे छै न, भरि दिन भरि राति साँझ के एके बेर हम घर खोलबै।
1: कोना छै आय,
0: बुझाइ छै अयलै कोना छै
1: बाबा। सुनै छै न,
0: नहि छै अंगना मे।
1: अरे तोरी भला के कता गेलै?
0: हम क्या न गेलियै से, कतौ जाइ छै कोई अंगना के लग तऽ हमरा कहि के जाइ छै।
1: ई कनी राख दह न।
0: कथी छियै अइमे से?
1: लस भरी छियै।
0: आगो बाबू सब, ई रस भरिये खाइत खाइत सबटा डी डावर बेच लेतै। जहिना बुढ़बा बुढ़िया छै, तहिना बुढ़बा बुढ़िया के एकटा अटकपार बेटा छै, केना के घर परिवार मे वृद्धि हेतै?
1: बुढ़बा बुढ़िया के नाम लै छै तऽ नहि कोनो बात, बेटा केना के अटकपार छै?
0: हैया देखती न, अटकपार नहि छै तऽ बड़ी नीक छै, कपार सोझ छै। देखती न कते छिट्टा के छिट्टा मच्छर बैठल छै। अपनी कुत्ता बिलाइ एतै तऽ की करतै एकरा?
1: अरे तरीके के छियै,
0: के छियै से देखती न, मुँह घर के हमरा नहि रहल गेलै तऽ हम तना ओढ़ा देली। घूर मने छै कर दिया, कनी मरचाइ धा दिबो घूर।
1: बारे उजकुनमा, तू तो जुलुम करै छी रौ। 15 दिन ससुरारि मे रहले, अयलै आ शुरू कए देलकै, कतऽ गेल रहै?
0: हम क्या न गेलियै से, माय रस भरी खेतै, आ ई की खेथिन? ई दही खायत, आ बेटा जेतै चमचम अड्डा, बढ़िया सिस्टम छै घर मे। हम किछो बाजै छी कहै छै परदेश वाली तऽ महान नटीन छी।
1: टका अनलकै कतऽ सँ? चमचम अड्डा गेलै,
0: हमर भैया फोन करने रखल के 2000 टका देलियौ हम गोर लगाए।
1: कते खुशी भए गए कहै छै, हमर भैया देलकै 2000 टका गोर लगाए, ई बड़का तीर मारि देलकै।
0: बाबू तैमे खुशी के कोन बात छै, दुखी के कोन बात छै, देलकै तै ने कहै छियै।
1: तोहर भैया के बरेन काम करै छ, पहिले आय छै कोन की दिमाग?
0: दिमाग नहि छै तऽ अते बड़का नौकरी करै छै, अते बड़का जमीन जथा छै, अते सथी छै, तऽ के करा कर राज काज ओकर चला दै छै, यहाँ जाके चला दै छथिन।
1: एहि खातिर कहलियै हम।
0: तऽ कथी खातिर कहै छथिन?
1: जब बुझै छै उजकुनमा एहने छै, जखनी टका देखै छै तखनी ओ मतलब केना के एकरा से लेबै टका, घरो मे नहि देखै छै केना केना करै छै, ओकरा हाथ के टका देलकै कथी ले जाय, ई चमचम अड्डा गेलै।
0: तऽ की करतिए बाबू, आप सबके गोर लागलकै तऽ गोर लगाए तऽ दिए पड़ै छै न, मर मेजमान के।
1: मर मेजमान के दिए पड़ै छै, ओ बुझ गेलियै बात, लेकिन वह टका अखनी हमार अथी मधी कहते यांगी में जो हमारा दे दिए ट्रांसफर क्या दिए तो आई ओ टका एना नहीं खर्चा हेतिय आय कतो से कतो आई कल टका चल जाये
0: देखी देखी केहन के बाजे में करती मेचो पर मुँह में
1: मेचन पड़ते
0: आय गोर लगते जमे लोग ससुरार में टका तो पठेते समझ लत नियम छे आय समझियो के कम गोर लगा दे छे लोग ये अपना ससुरार जतीन सबके गोर लगतीन 15-20 दिन महीना दिन 6 महीना रहतीन से नहीं हेतन ओकरा के ससुरार के टका पे कथी लोभ दाब देना छे आ यमी कर देती है तो नहीं हेतिये
1: लभा न टका तो दलकन हाथ के
0: नहीं दलक तकर सजाए भोगे छे खाइए ल न देबी
1: खेना न छे अखन तो
0: कथी दवे खाए लो से
1: हाय हाय बेदरा देखो केना सुतल छे ओ बा बड़ी समस्या छे
0: 2000 टका असगर खा ललका बेदरा छिए एकर बेदरा
1: दह दह खाइल दह
0: कथी ल देबे से कल के होटल में गेलिए रे चमचा मैडम फ्राई खेलिए झोराई खेलिए ग्रेवी खेलिए मुढ़ी खेलिए चूड़ा खेलिए एक टा गप कहबन बाबू
1: आब कथी बाकी रह गेलो
0: जेना गाड़ी में जे तेल दे छे न
1: हाँ
0: आ जब तक तेल रहे छे गाड़ी में
1: हाँ
0: तब तक गाड़ी चले छे न चाहे जत्ते दूर जा सके छे
1: चले छे की तहिना है छे
0: हाँ तहिना यह सिस्टम छे निनकर बेटा में जब एक गोजी में टका रहले न बाबू तब अंधुन चलले की चलले नहीं चलले ओकर था नहीं छे आ जहाँ गोजी में टका सठ गेले आ की पटपटाल घर दिसन चल गेले
1: अच्छा ला ला ला लावा खाए ला लावा हम गोर हाथ धो के आबे छिए
0: जा नहीं छे गोर हाथ धोय ल हिनका तो देबे नहीं खाए ल
1: खाना
0: लगवे जो काम न करे सो हमरे नाम लगा दे
1: पान धारे मुँह बके हमरे नाम लगा दल के चुप कपड़ दरुआ ओ तोरा दल को पानी कपार ऐसे बढ़िया से खाने पकड़ लेना रहती है शान निकल रही थी की क्या दल के कहना क्या दल के एक ही कुत्ता से अपने मना पैन पुजा दल के एक हमारे घर के लोग से खुशामद करे छे तो नहीं दे छे कहला
2: चुपला चुपला
1: धन्यवाद कुत्ता जी के
2: ला ला ला ला सटका ला दे
0: बाबू कता गेल रे कुत्ता भंसा घर डुकल रहे
2: ए भगवान भंसा घर से की निकलत है हम गेलिए कॉल पर आई तीन चारटा होने से हुलकले दौड़ले चलि गेलै जा एकरा स्नान कर खम बढ़िया से आब गंगा जल और छिटो या
0: हेते बाबू आप नहीं कहती हम बुझ गेलिए
2: हाँ ला कथी पकेना छ कथी रिन्न छ लाव खाइल
0: की करबे बाबू पूरी छ तरकारी छ खीर छ
2: अरे तरी के पूरी खीर तरकारी आय कोन स्पेशल रहे छ
0: घर में छ बाबू
2: मोर आटा तटा रहबे न करत फेर ई कत से चल एल आइन लल
0: हे भगवान हमरा त मुंह से बजा दल के बाबू नहीं बुझलखिन ओइ दिन गाम से नहीं आल छलिया
2: ए हा हा हा गाम से हटे लाके आल हिंदुस्तान ले अथी आटा
0: हे भगवान के करोड़ से दिमाग लगेते छोड़ दे छे यावत न खास इनका मतलब छन कि उकटा उकटी से मतलब छे
2: अच्छा ले आवे छे जे भेले से भ गेले अब लेकिन हे आप जे जत न तो पैसा तैसा एकरा हाथ के नहीं कही ह दैला न त फेर अहिना करत
3: बेस्ट श्रोता मित्र आजुक नम्रता के निर्धारित समय ठाम समाप्त भ गेल आजुक कार्यक्रम से हम जीवछ
2: हमें जिलेबिया
4: आ हम सरिता विदा चाहे छी नमस्कार शुभ संध्या
5: अपने सब सुन रहल छी गुरुकुआ FM 92.8 MHz पर।

नीम करोली बाबा के जीवनी पर आधारित आ 175 करोड़ सँ बेसी के कारोबार विश्व भरि मे करय मे सफल फिल्म हनुमान।

0: शिव शंकर सिनेमा राज विराज में चल रहा है फिल्म हनुमान अंश।
1: हिंदी फिल्म हनुमान अंश सब परिवार आब देखू आ बाबा नीम करौली के जीवनी से प्रेरित हो। फिल्म हनुमान अंश
0: संपूर्ण सुविधा से संपन्न यूनिक अस्पताल रायपुर रूपनी आ यूनिक सिटी अस्पताल राजविराज।
2: अब बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरन वीर अस्पताल काठमांडू एम्स अस्पताल दिल्ली के दक्ष एवं अनुभवी विशेषज्ञ डॉक्टर सब द्वारा हर प्रकारक रोग के जांच आ इलाज करैत अछि।
0: एहिठाम महिला स्त्री एवं प्रसूति पुरुष आ बाल रोग संबंधी जांच आ इलाज करैत अछि।
3: सेवा आ सुविधा सब
2: 24 घंटा इमरजेंसी आ एम्बुलेंस सेवा ओपीडी मेडिसिन सेवा
3: ऑपरेशन सेवा चर्म रोग हार्ट जर्नी डायबिटीज
2: होल बॉडी जांच सीटी स्कैन आईसीयू एनआईसीयू ओटी
0: डिजिटल एक्सरे एसी नॉन एसी कैबिन के सुविधा है।
3: संपर्क कर जाए
2: यूनिक अस्पताल रूपनी रायपुर आ यूनिक सिटी अस्पताल राजविराज 6 गणेश मंदिर नजदीक।
3: फोन
2: 031-530-7076
3: मोबाइल
2: 9805-60800 आ एम्बुलेंस के नंबर 9805-56205 9805-56202।
4: फिरता फिरता 20% समक्यास फिरता चाहिए पानी चाहा पानी
5: कैश फिरता लिनु भएता
6: एनसेल पैक किन्नु भएता जहिले पनि जहाँ पनि प्याक खरीद गर्नुहोस् अनि 20% सम्म क्याश फिर्ता एनसेल एपमा क्लेम गर्नुहोस्। एनसेल पैक किन्नु भएता शर्तहरू लागू हुनेछन्। एनसेल नेपालकै लागि।

0: नवरत्न कुल ओइलको दुई मिनटको मालिसले राख्छ तपाईँलाई कुल, दिलाउँछ गर्मी, टाउको दुखाई, थकान अनि अनिन्द्राबाट आराम। नवरत्न वर्ल्ड नम्बर वन कुल ओइल, चिसो चिसो कुल कुल।
1: एकटा खुसीको खबर छौ।
2: कथि छौ?
1: विदेश से छुट्टी में आयल आदमी सब के श्रम स्वीकृति के काम अब राज विराज में चालू भ गेल छी। आंख के फोटो आ फिंगरप्रिंट के लेल कतो बाहर नहीं जा पड़तो।
3: जी हाँ, अली कम्युनिकेशन
4: एठम विदेश जवाक लेल श्रम स्वीकृति के काम, देश विदेश के लेल हवाई टिकट बुकिंग आ टिकट के डेट चेंज, भारत के लेल रेलवे टिकट बुकिंग,
3: विदेश सेवा के लेल ओरिएंटेशन कक्षा, मेडिकल जांच, कतार आ दुबई के लेल विजिट वीसा एवं विदेश में चिट्ठी पत्र पठेबा के लेल कुरियर सेवा उपलब्ध है।
4: नया पासपोर्ट बनेबा के लेल ऑनलाइन केनाई आ विदेश जाय वाला के लेल राष्ट्रीय परिचय पत्र के फ्री ऑनलाइन फॉर्म भरनाई के संगे हरेक कंपनी के मोबाइल थोक दर में बिक्री आ मरम्मत करैत अछि।
3: संपर्क
4: अली कम्युनिकेशन एंड ट्रैवल्स, चतुर्भुज मार्केट, मेन रोड, लोहार गली, राजविराज 4, सप्तरी।
3: फोन
4: 0315325575।
3: मोबाइल
4: 9801502475।
5: रंग बहार रंग बहार
6: बर्जर संगे उपहार उपहार बम्परमा यामाहा रेजियर।
5: बर्जर पेन्ट्स ले घर रंगाउनु होस् र लकी ड्र मार्फत यामाहा रेजियर 125 स्कूटर बम्पर उपहार जित्ने मौका पाउनु होस्।
6: साथै 65 इन्चको स्मार्ट टिभी, रेफ्रिजरेटर, वाशिङ मसिन लगायत 350 भन्दा बढी आकर्षक उपहारहरु पनि। घर रंगाऊ, खुशी बनाऊ, उपहार जित्ने अवसर पाऊ।
5: बर्जर पेन्ट्स।

0: कतौ गेलो ये
1: की कहै छी यौ
0: हमर कपड़ा सब अटैची में दो दिलिए काल हम भोरे चल जेबे
1: आहा तो भोरे चल जेबे आहा बिनु हमरा नीक नै लागत
0: की करबे हमरो नै मोन लागत मुदा परदेश।

0: बाढ़ के मौसम में सतर्क रहू आ सुरक्षित रहू। बाढ़ कोनो बखत आबि सकैत अछि, ताई प्रतिकार्य के लेल तैयार रहू।
1: जल तथा मौसम विज्ञान विभाग DHM द्वारा नेपाल के विभिन्न भाग में औसत से बेसी वर्षा होबाक पूर्व अनुमान कयल गेल अछि, जै कारण बाढ़ आ कटान के जोखिम बढ़ सकैत अछि।
0: सतर्क रहि कऽ आवश्यक जानकारी प्राप्त करू आ स्थानीय सूचना सब के पालन करू। अहाँ के सुरक्षा अहीं के जानकारी पर निर्भर अछि।
1: बाढ़ के जोखिम भेला पर ई उपाय सब अपनावल जाओ।
0: जल तथा मौसम विज्ञान विभाग, वडा कार्यालय, स्थानीय सरकार तथा विपद जोखिम न्यूनीकरण संबंधी जिम्मेवार व्यक्ति सब प्राप्त बाढ़ संबंधी जानकारी आ चेतावनी के ध्यान पूर्वक सुनू आ तही अनुसार उपयुक्त निर्णय लिया।
1: नजदीक रहल नदी खोला में पानिक बहाव के नियमित रूप में अनुगमन करू। नदी किनार या बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में वसवास कर रहल छी तो सुरक्षित आश्रय स्थल या उचगर स्थान में रहू आ सुरक्षित रूप से निकले वाला रास्ता बाट खोजू।
0: सूचना द्वारा चेतावनी जारी भेल तो देर नहीं कर तुरंत सुरक्षित स्थान में जेबाक लेल तैयार रहू।
1: अति आवश्यक सामान जना कि टॉर्च लाइट, मोबाइल फोन, चार्जर, दवाई, सूखा खाए वाला सामान, सफा पीबा वाला पानी, नगद रुपया, नागरिकता, पासपोर्ट लगायत अन्य प्रमाण पत्र सब झटपट झोला में तैयारी अवस्था में राखू। झटपट झोला का घर भीतर जल्दी पहुँचा वाला आ तुरंत लो जा सके वाला स्थान में राखू।
0: अपन संपत्ति के सुरक्षा करू, संभव अछि तो बहुमूल्य सामान आ चौपाया के उचगर स्थान में लो जाओ।
1: दूसरों के मदद करू, बाल बालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा अपंगता भेल व्यक्ति सब के आवश्यक सहयोग करू। गर्भवती, सुतकेरी आ स्तनपान करा रहल माई के लेल सुरक्षित वास के व्यवस्था करू। ओ सब के लेल सकभर अलगे आ सुरक्षित चर्पी के प्रबंध करू।
0: विपद के बाद होवा वाला सर्पदंश तथा पानी जन्य संक्रामक रोग के जोखिम रहला सँ सचेत रहू। ई सूचना परिवार, पड़ोसी आ जन समुदाय में जानकारी कराओ।
1: बाढ़ दरवाजा तक आबि जाए ऐसे पहिने ही तैयार रहू आ आइए से सतर्क भ जाओ।
0: ई संदेश अंतर्राष्ट्रीय एकीकृत पर्वतीय विकास केंद्र ईसी मोड अंतर्गत के हाईग्रिड परियोजना द्वारा ऑस्ट्रेलियन सरकार आ सबल नेपाल के सहयोग में प्रसारण कयल गेल अछि।
2: चेतावनी सुनू, तुरंत निर्णय लिया आ सुरक्षित रहू।

0: नवरत्न कुल ओइल को दुई मिनट को मालिश ले रख्छ तपाईलाई कुल दिलाउँछ गर्मी टाउको दुखाई थकान अनि अनिन्द्राबाट आराम नवरत्न वर्ल्ड नम्बर वन कुल ओइल चिसो चिसो कुल कुल
1: अपाङ्गता भेल व्यक्ति बाल बालिका ज्येष्ठ नागरिक आ बिरामी के विशेष ध्यान देबाक चाही।
2: आइ काल्हि अत्यधिक गर्मी आ गरम हवा चलो वाला समय अछि। ताइ एहन अवस्था में जर एनाय, उल्टी जका लगनाय, थकान लगनाय, बेसी प्यास लगनाय, धड़कन बढ़नाय, श्वास प्रश्वास में समस्या भेनाय, अत्यधिक माथ दुखेनाय, बेहोश भेनाय, मांसपेशी सब दुखेनाय, उल्टी भेनाय जेहन समस्या सब देखल जा सकत अछि।
1: गरम हवा के प्रभाव तथा लू लागत से बचे वाला उपाय सब
2: जूस शरबत आदि प्रशस्त मात्रा में पियल जाओ।
1: दिन भर प्रशस्त पानी आ झोर वाला चीज सब सेवन कैल जाए।
2: हल्का ढीला आ सूती के कपड़ा सब लगावल जाए।
1: संभवतः ठंडा स्थान में बैसल जाए।
2: दोपहर के समय में अनावश्यक घर से बाहर नहीं जाओ।
1: बाहर जाइए पर छाता टोपी चश्मा आ पंजा प्रयोग कैल जाए।
2: खाली पेट बाहर नहीं जाओ।
1: दोपहर के समय में कड़ा शारीरिक परिश्रम नहीं कैल जाए।
2: स्वास्थ्य संबंधी कोनो प्रकार के समस्या देखल जाए तो स्वास्थ्य

0: संग नियमित संपर्क में रह अनुरोध कैल जात अछि। सबल नेपाल आ समावेशी अपांग संग सप्तरीक साझेदारी तथा CBM ग्लोबल के सहयोग में संचालित अपांगता समावेशी विपद जोखिम न्यूनीकरण परियोजना द्वारा जनहित में जारी संदेश।
1: एखन अपने सब सुन रहल छी भोरकवा FM 92.8 MHz।

0: सौ प्याकेट भित्र रहेका कुपनहरू हल्का प्लस रमाइलोलाई मिलाउनुहोस् र प्राप्त गर्नुहोस् एक प्याकेट मामा चाउचो सित्तैमा।
1: मामासँग हल्का रमाइलो।
2: सम्पूर्ण सुविधा सह सम्पन्न युनिक अस्पताल रायपुर रुपनी आ युनिक सिटी अस्पताल राजविराज।
3: अब बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान वीर अस्पताल काठमांडू एम्स अस्पताल दिल्ली के दक्ष एवं अनुभवी विशेषज्ञ डॉक्टर सब द्वारा हर प्रकारक रोग के जांच आ इलाज करते
2: एठाम महिला स्त्री एवं प्रसूति पुरुष आ बाल रोग संबंधी जांच आ इलाज करते
4: सेवा आ सुविधा सब
3: 24 घंटा इमरजेंसी आ एम्बुलेंस सेवा ओपीडी मेडिसिन सेवा
4: ऑपरेशन सेवा चर्म रोग हार्ट जर्नी डायबिटीज
3: होल बॉडी जांच सीटी स्कैन आईसीयू एनआईसीयू ओटी
2: डिजिटल एक्सरे एसी नॉन एसी कैबिन के सुविधा है।
4: संपर्क कर जाए
3: यूनिक अस्पताल रुपनी रायपुर आ यूनिक सिटी अस्पताल राजविराज 6 गणेश मंदिर नजदीक।
4: फोन
3: 031-530-7076
4: मोबाइल
3: 9805-60800 आ एम्बुलेंस के नंबर 9805-56205 9805-56202।
5: फिरता फिरता 20% समक्यास फिरता जैले पनी जहा पनी
6: क्याश फिरता लिनु भाय ता
7: एनसेल प्याक किन्नु भए त जहिले पनि जहाँ पनि प्याक खरिद गर्नुहोस् अनि 20% सम्म क्याश फिर्ता एनसेल एपमा क्लेम गर्नुहोस्। एनसेल प्याक किन्नु भए त

0: Media.
1: Extreme energy drink.
2: अपने साथ जरूर रहिए, बोलो कुबा।

0: राज विराज में आप सब प्रत्येक दिन वरिष्ठ छाला यौन रोग तथा सौंदर्य विशेषज्ञ डॉक्टर रंजू पोखरेल MBBS MD डर्माटोलॉजिस्ट द्वारा जांच इलाज भ रहल अछि।
1: जो एहन कोनो समस्या अछि तो निक आ प्रभावकारी इलाज के लेल अनुभवी डॉक्टर रंजू पोखरेल के क्लिनिक सरिता मेडिकल हॉल में संपर्क करू।
0: याद राखू, सरिता मेडिकल हॉल सरकारी अस्पताल के पश्चिम गेट में।
1: फोन नंबर 9800011978।
2: सम्पूर्ण सुविधा से सम्पन्न यूनिक अस्पताल रायपुर रूपनी आ यूनिक सिटी अस्पताल राजविराज।
3: अब बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरन, वीर अस्पताल काठमांडू, एम्स अस्पताल दिल्ली के दक्ष एवं अनुभवी विशेषज्ञ डॉक्टर सब द्वारा हर प्रकारक रोग के जांच आ इलाज करते हैं।
2: एहिठाम महिला, स्त्री एवं प्रसूति, पुरुष आ बाल रोग संबंधी जाँच आ इलाज करते हैं।
4: सेवा आ सुविधा सब
3: 24 घंटा इमरजेंसी आ एम्बुलेंस सेवा, OPD, मेडिसिन सेवा,
4: ऑपरेशन सेवा, चर्म रोग, हार्ट जर्नी, डायबिटीज,
3: होल बॉडी जांच, CT स्कैन, ICU, NICU, OT,
2: डिजिटल एक्सरे, AC, नॉन AC कैबिन के सुविधा है। संपर्क कर जाए
3: यूनिक अस्पताल रुपनी रायपुर आ यूनिक सिटी अस्पताल राजविराज 6 गणेश मंदिर नजदीक।
2: फोन
3: 031-530-7076।
2: मोबाइल
3: 9805-60800 आ एम्बुलेंस के नंबर 9805-56205 9805-56206।

0: नीम करोली बाबा के जीवनी पर आधारित आ 175 करोड़ सँ बेसी के कारोबार विश्व भर में करो में सफल फिल्म हनुमान अंश शिव शंकर सिनेमा राजबिराज में चल रहल अछि। फिल्म हनुमान अंश
1: हिंदी फिल्म हनुमान अंश सब परिवार आब देखू आ बाबा नीम करोली के जीवनी सँ प्रेरित हो फिल्म हनुमान अंश।
0: एखन भोरक FM में रात के 8 बजल।

0: ओहिठाम सब सामान भेटै छै।
1: ओतऽ की सब तैयार करै छै यौ?
0: बस पलंग, थ्री पीस आ टू पीस दराज, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, कुर्सी, अलना, ड्रेसिंग टेबल, बाघ पंजा सोफा सेट।
1: जी हाँ, शादी विवाह आ ऑफिस के लेल संपूर्ण सामान आधुनिक मशीन से कंप्यूटर के डिजाइन अनुसार फर्नीचर तैयार कैल जाए छे।
0: 5x6 फीट के फुल बुटा के बॉक्स पलंग शादी सेट 35,000 आ 6x7 फीट के शादी सेट बॉक्स पलंग 45,000 में भ जाए। संगे मॉडल किचन खरात कार्विन के व्यवस्था छे। पलाई, फोर्मिका, रेडीमेड ढोका, हैंडल, हत्था, कांटी, कब्जा, स्प्रिट, चपरा आ शीशा लगात फर्नीचर के संपूर्ण सामान उपलब्ध।
1: प्रोपराइटर शंभु सुतिहार,
0: जय श्री हनुमान ट्रेडर्स, राजविराज 1, कंचनपुर रोड, नहर चौक, चूड़ा मिल के बगल में।
1: मोबाइल
0: 9807040070 आ 9862866270।
2: ये दीदी देह भारी छे आ डाँड़ पीठ से दुखाइए, कौन उपाय करबे?
1: बहुत पुरान आ अनुभवी छे डॉक्टर दिलीप कुमार सा अपने घर में सेवा दे रहल छे, चलू ना ओते जांच करा दे छी।
0: अब अपने भवन राजविराज में गजेंद्र नारायण सिंह सर माथांचल अस्पताल में कार्यरत प्रसूति तथा स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दिलीप कुमार शाह, टीचिंग अस्पताल काठमांडू, MD।
1: प्रसूति आ स्त्री रोग संबंधी संपूर्ण जांच आ इलाज करैत अछि।
0: सेवा आ सुविधा सब
1: बच्चादानी खसनाई के ऑपरेशन सेवा, गर्भवती महिला जांच, स्त्री रोग, लिकोरिया, महीनावारी गड़बड़ी, पीठ आ डाँड़ दुखेनाई, पेशाब जलन, मांस बढ़नाई, निसंतान दंपति के परीक्षण, IUI सेवा, वीडियो एक्सरे,
0: आधुनिक लैब के संगे फार्मेसी सेवा उपलब्ध।
1: अवश्य सेवा के मौका देल जाए।
0: प्रसूति तथा स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दिलीप कुमार शाह, राजविराज, हनुमान नगर रोड, साबिक जन स्वास्थ्य ऑफिस से पूरब छिन्नमस्ता अस्पताल के सामने दक्षिण साइड।
1: मोबाइल
0: 9861 77985 आ 9817 89133।

0: भौजी बहुत टेंशन में छे, की भ गेल?
1: की हेतै देखू ना, केन बॉक्स पलंग खरीद के आनलकै जे नोट कसते कसते सब टूट गेल।
0: सुनू, जय श्री हनुमान ट्रेडर्स में बहुत मजबूत बॉक्स पलंग भेटै छे, खरीद के आन।

0: नीम करोली बाबा के जीवनी पर आधारित आ 175 करोड़ सँ बेसी के कारोबार विश्व भर में करो में सफल फिल्म हनुमान अंश शिव शंकर सिनेमा राजबिराज में चल रहल अछि। फिल्म हनुमान अंश
1: हिंदी फिल्म हनुमान अंश सब परिवार आब देखू आ बाबा नीम करोली के जीवनी सँ प्रेरित हो फिल्म हनुमान अंश।
0: राजविराज में आप सब प्रत्येक दिन वरिष्ठ छाला यौन रोग तथा सौंदर्य विशेषज्ञ डॉक्टर रंजू पोखरेल MBBS MD डर्माटोलॉजिस्ट द्वारा जांच इलाज भ रहल अछि।
2: जो एहन कोनो समस्या अछि त नीक आ प्रभावकारी इलाज के लेल अनुभवी डॉक्टर रंजू पोखरेल के क्लिनिक सरिता मेडिकल हॉल में संपर्क करू।
0: याद राखू सरिता मेडिकल हॉल सरकारी अस्पताल के पश्चिम गेट में।
2: फोन नंबर

0: नवरत्न कुल ओइलको दुई मिनटको मालिसले राख्छ तपाईँलाई कुल, दिलाउँछ गर्मी, टाउको दुखाइ, थकान अनि अनिन्द्राबाट आराम। नवरत्न वर्ल्ड नम्बर वन कुल ओइल, चिसो चिसो कुल कुल।
1: रंग बहार रंग बहार
2: बर्जर संगे उपहार उपहार बम्पर मा यामाहा रेजियार
1: बर्जर पेंस ले घर रंगाउनु होस् र लकी ड्रा मार्फत यामाहा रेजियार 125 स्कूटर बम्पर उपहार जित्ने मौका पाउनु होस्।
2: साथै 65 इंच को स्मार्ट टीवी, रेफ्रिजरेटर, वाशिंग मशीन लगायत 350 भन्दा बढी आकर्षक उपहारहरु पनि। घर रंगाओ, खुशी बनाओ, उपहार जित्ने अवसर पाओ।
1: बर्जर पेंस।
3: अपने सबक संग भोरुकवा FM 92.8 MHz।